FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:58 होने को है। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। श्रोता सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी

0: गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद सुबह 6:10 पर श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण होगा सुबह 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार श्रोता सुन सकेंगे सुबह 6:45 पर। भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान सुनेगा सुबह 7:20 पर। कार्यक्रम नमस्कार चूरू का प्रसारण होगा सुबह 7:30 पर। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से ही सुबह 8:00 और सुबह 8:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुनेगा एफएम चूरू से सुबह 8:30 पर। आकाशवाणी केंद्र जयपुर से आप सुन सकते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुबह 9:00। देशगान का प्रसारण होगा सुबह 9:10 पर। कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका सुनेगा सुबह 9:15 पर। फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक सुनेगा सुबह 9:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र मुंबई से सुबह 10:00। सुबह 11:00 सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेगा दोपहर 1:00। इन्हें हम आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले करेंगे। महिलाएं सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर। मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से दोपहर 2:00 और दोपहर 2:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने प्रसारित होगा दोपहर 2:30 पर। हमारी आज की सायंकालीन सभा में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। समय रहेगा शाम 5:00 का। शाम 6:00 सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम।

6:05 पर। फिल्म संगीत के देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा 6:10 पर। संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से 6:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेगा आकाशवाणी केंद्र जयपुर से 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, समय रहेगा 7:00 का। 7:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि 8:00 आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 90 साल कुमार अजय से अमित कुमार की भेंट वार्ता। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता पेशे खिदमत होगा रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या और न्यूज एट 9 सुनेगा रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9:00। फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन सुनेगा रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत प्रसारित होगा रात्रि 10:00 और लोक संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार सुनिएगा रात्रि 11:00 और 11:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। इन्हें हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले करेंगे।

14 भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

श्रोताओं, पुस्तकें मित्र और सच्ची पथ प्रदर्शक हैं। साथियों, हम किसी भी उम्र के हैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का है, चाहे वो बालपन में है, युवा अवस्था में है या बुजुर्ग अवस्था में है, पुस्तकें हमने हमारे जीवन में किसी भी स्तर की, किसी भी साहित्य की, किसी भी भाषा की, किसी भी विषय की हो, हमने जब कभी पढ़ी, उन पुस्तकों ने कभी हमें नहीं कहा कि हमें इतना समय दीजिए, उन पुस्तकों ने कभी ये नहीं कहा कि हमें दिन में इतनी बार पढ़ा कीजिए, उन पुस्तकों ने कभी यह नहीं कहा कि हमें सारे दिन साथ रखा करें, उन पुस्तकों को कभी हमने एक महीना दो महीना टच भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, उनकी तरफ देखा भी नहीं, तो भी उन्होंने पलटकर नहीं कहा कि हमें आप इतना अवॉइड ना किया करें। सच मायने में देखा जाए, पुस्तकें हमारी वे मित्र होती हैं जिनकी जिनको हमसे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं होती, और वे सदैव हमारे स्वभाव पर अपनी मित्रता बरकरार रखने के लिए तैयार होती हैं। और सही मायने में एक मित्र की और सच्चे पथ प्रदर्शक की यही परिभाषा होती है कि वो किसी भी प्रकार की हमसे अपेक्षा रखे बिना हमें सदैव अपना सहयोग और पथ प्रदर्शन देने के लिए तैयार हो। और दूसरी बात, पुस्तकें हमेशा निरपेक्ष होती हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करती हैं। हाँ, ये बात और है कि उन्हें पढ़ने वाला उन्हें किस माइंड से पढ़ रहा है वो उसमें अपना पक्ष और विपक्ष जरूर खोज लेता है, लेकिन पुस्तकें

हमेशा निरपेक्ष होती हैं। एक वही पुस्तक, उसी पुस्तक का एक वही अध्याय अगर 10 व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो उन्हें अपने अनुसार वो उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए पुस्तकें पढ़ते समय सबसे बड़ा एक जो तरीका है वो है कि आप निरपेक्ष भाव से पढ़ेंगे तो जो उसमें लिखा गया है, जिस भाव से लिखा गया है और लिखने वाले की जो सोच है, आपको ठीक वही समझ में तभी आएगी जब हम उसमें निरपेक्ष भाव से उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए जीवन में आप और कोई भी मित्र बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन हमें जीवन में पुस्तकों से जो प्रेम है वो रखना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में सच्चे मित्र और सच्चे पथ प्रदर्शक का काम करती है पुस्तकें।

एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम वंदना।

श्रोता अभी सुन रहे थे देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में कबीर अमृतवाणी। इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। इस गीत के लिए शब्द हैं राजेंद्र कृष्ण के।

श्रोतावी सुन रहे थे रखवाला फिल्म में लता मंगेशकर को। अगली आवाज आपकी रेडियो सेट पर भूपेंद्र और आशा भोसले की। संगीत होगा पप्पी लहरी का और शब्द हसन कमाल की।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोता इस वक्त FM चूरू से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। अभी श्रोता सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म दोस्ती में। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर को फिल्म हमराज के लिए। श्रोताओं आप सुनेंगे साहिर लुधियानवी के शब्दों को रवि के संगीत निर्देशन में।

0: FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 373।
1: एपिसोड नंबर 373 373।

भगवान शिव ने जगत जननी पार्वती को इस प्रकार वो कथा सुनाई जो काक भुशुंडी ने गरुड़ का मोह भंग करने के लिए सुनाई थी। प्रभु के चरित्र की संख्या अपरिमित है, अपार, जिनका वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती। भवानी कृतकृत्य हुई, उनके मन का संशय मिट गया, श्री राम के प्रताप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया।

श्रोता, अभी सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और ए हरिहरन की आवाज में भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोताओं, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आने वाले मुस्तकबिल, हमारे भविष्य का परिचय होते हैं हमारे होनहार बालक, हमारी जो नवजात पीढ़ी है, बच्चे हैं। ठीक इसी तरह परिवार का स्तंभ होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, और ना केवल हमारे घर परिवार का बल्कि हमारे पूरे देश की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो अनुभव होता है वो बुजुर्गों के पास होता है। इसलिए जिस प्रकार से बच्चे देश का मुस्तकबिल होते हैं, उसी प्रकार देश का जो हमारी थातियां जिनको कहें, हमारे अचीवमेंट जिनको कहें, जिनको अनुभवों का खजाना है उन जो कहें, वो होते हैं बुजुर्ग। इसलिए हम किसी भी स्थिति में बुजुर्गों का अनादर ना करें, किसी भी स्थिति में बुजुर्गों को अवॉइड ना करें, किसी भी स्थिति में हम उसको इसलिए हाशिए पर ना करें कि वो अब शक्तिहीन या कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए अब वो काम के नहीं हैं, बल्कि आप देखेंगे उनके पास 70, 80, 90 वर्षों का वो अनुभव है जो हमारे पास हो ही नहीं सकता। आप हो सकते हैं 25, 30, 35 बरस के हैं, 40 बरस के हैं, आपके पास ज्ञान खूब हो सकता है, आपने एडवांस से एडवांस स्टडी की होंगी, लेकिन फिर भी आपकी आयु उनकी आयु की अपेक्षा आधी ही है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपके पास इस जीवन के उतार चढ़ावों का जो अनुभव है वो भी आधा ही है। इसलिए कभी भी अपने आप को उनसे अधिक हम आंकने की कोशिश ना करें। और बहुत से मौकों पर

उन समस्याओं को बड़ी आसानी से सुलझाने की कीमिया उनके पास है। इसलिए इस चीज को आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करके देखें, आप पाएंगे कि आप जिन चीजों में लंबे समय से उलझ रहे हैं, जिनके सॉल्यूशन आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, वो हमारे बड़े बुजुर्गों के पास है।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी स्टाफ, सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। चलिए श्रोताओं, बात करते हैं अब हमारी हेल्थ की, और हेल्थ से भी ऊपर हम बात करें तो हम किस तरह से फिट रह सकते हैं, किस तरह से ज्यादा तंदुरुस्त रह सकते हैं, उसकी बात हम करते हैं। और आपके अनुभव और हमारे अनुभव हम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, रूटीन के ऐसे तरीके जो छोटा मोटा हम लाइफ में चेंज करके, छोटा मोटा हम अपने खान पान में चेंज करके अपने आप को अधिक हेल्दी वेल्दी बना सकते हैं। आज बात करेंगे एक छोटी सी अंकुरित अनाज की। जी हाँ श्रोताओं, वही अनाज हम बिना अंकुरित किए जब इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट उसमें भी बहुत फायदे मिलते हैं, उसमें भी जो जितने भी प्रोटीन विटामिन होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, चने का एक दाना आपने देखा है, अगर हम उसको पानी में नहीं भिगोते हैं और उसको पानी में भिगोकर अंकुरित नहीं करते हैं तो उसमें जो छुपा हुआ एक उसमें पावर है, जो एक उसमें प्रोटीन है, वो अंकुरित होकर बाहर नहीं आता। वो प्रोटीन केवल अंकुरण के दौरान ही पैदा होता है, इसलिए अगर हम उसको बिना अंकुरित किए खाएंगे तो वो जो उसमें पैदा होकर जो एक नया प्रोटीन क्रिएट करने की शक्ति है वो इस्तेमाल नहीं होती है। इसलिए अंकुरित अनाज को जितने भी न्यूट्रिशियन हैं, जितने भी चिकित्सक हैं, उन्होंने अधिक फायदेमंद बताया है। इसलिए आप कोशिश करें कि जिस अनाज को भी आप सहज तौर पर अंकुरित कर सकते हैं और अंकुरित करके खा सकते हैं उसको अंकुरित करके ही खाइएगा। और चने जिस तरह से अंकुरित करके खाए जाते हैं उसकी क्वालिटी लगभग 2-3 गुना अधिक बढ़ जाती है, उसमें जो प्रोटीन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए अंकुरित अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए ना केवल बेहतर हैं बल्कि उसमें वो चीज़ एक एक्स्ट्रा पैदा हो जाती है जो बिना अंकुरित अनाज में नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि हम किसी भी अनाज को बेहतर तरीके से अंकुरित करें और अंकुरित करने के बाद ही इस्तेमाल करें।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोता इस वक्त FM चूरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। श्रोताओं, हमारा प्रदेश राजस्थान न केवल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे देश में सबसे विशाल है, बल्कि यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की परंपराओं की, यहाँ की कलाओं की बात करें तो भी हमारा जो राज्य है बहुत समृद्ध है। यहाँ इतनी तरह तरह की कलाएं, परंपराएं और इतनी प्राचीन हैं कि पूरी दुनिया में, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया से जो पर्यटक हैं इसको देखने के लिए, निहारने के लिए, फील करने के लिए आते हैं। और बहुत से विदेशों से, यूरोप से आने वाले पर्यटक यहाँ कई कई दिन रुककर यहाँ की संस्कृति को जीकर देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है श्रोताओं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कहीं घूमने जाते हैं, फोटोग्राफी कर लेते हैं या देखकर निहार कर घंटा दो घंटा या आधा दिन में चले जाते हैं, उसकी बजाय यहाँ की संस्कृति इतना लुभाती है कि यहाँ बहुत से पर्यटक कई कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। चाहे यहाँ के धोरों की बात हो, यहाँ की हवेलियों की बात हो, उन हवेलियों की कलाकृतियों की, भित्ति चित्रों की, उनके बनावट की, उनके स्ट्रक्चर की, उनमें रहकर जीकर जो जीवन है वो देखना अपने आप में इस बात का परिचय है कि हमारा संस्कृति और उसका जो स्वरूप है बहुत विशाल है, बहुत समृद्ध है और बहुत अनूठा है। और इसीलिए पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारा राजस्थान बहुत अनूठा है। हम में से बहुत से साथी ऐसे हैं कि हम यहाँ के ही हैं लेकिन फिर भी हमने हमारा पूरा राजस्थान कभी शायद नहीं देखा होगा। आप भी ऐसा दावा नहीं कर सकते कि हमने राजस्थान की लगभग लगभग सारी चीज़ें देखी हों, वो कलाएं, वो तरह तरह की शैलियाँ। इसलिए जब कभी मौका मिले, जब कभी छुट्टियां हो, आपको सहूलियत हो, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को राजस्थान की एक एक जो अनूठी चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, अद्वितीय चीज़ें हैं, उनको ज़रूर आप देखिएगा, उनको फील कीजिएगा।

तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आज जो अपनी बातें हुई हैं उन सभी बातों पर हम फिर से अमल करेंगे, फिर से उन्हें अपनी लाइफ में लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिएगा अपने साथी मनीष भारद्वाज को। FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों

0: में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
7: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
8: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
9: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
10: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
11: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: United States.
1: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम सुर संगम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं, श्रोता सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों

0: से एकजुट होने का आह्वान पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि संघर्ष की इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार 80 परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को इस महीने जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री कल गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने उद्यमशीलता की बदौलत देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्थान के विकास में उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने वाले राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की याचिका में दायर दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। चार शहरों में दिन का पारा 45, वहीं चार शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
3: जिले में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। पंखे और कूलर भी असर साबित हो रही हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रही हैं। इस बीच लू और ताप घात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: राजधानी जयपुर में भी गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं और दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 4-5 दिन हीट वेव और गर्म रातें दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी चलने और गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। कल हनुमानगढ़ में हल्की बरसात हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ कल रात कोटा पहुंची। उन्होंने अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लॉन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि शुरुआती जांच में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जयपुर से आई 5 विशेषज्ञों की टीम मामले की गहन जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
4: देखिए, अभी तो केवल अंदर जो आईसीयू की जो स्थिति है उसको देखा है। जो पेशेंट्स 4 एडमिटेड हैं, उसमें से एक तो काफी ठीक है, 3 अभी भी थोड़े से अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनको अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, पर जैसे टेक्निकली डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे पूरे टाइम, और जो सारा मॉनिटर कर रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि होपफुली बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाएंगे।
0: डीग जिले के परमधरा गांव में कल 3 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने 33,72,00,000 रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 21 गांवों की कृषि भूमि को सीधा फायदा मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस साल की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये सेवा और संवेदना का पर्याय है। इनकी सेवा भाव से असंख्य लोगों के जीवन में आशा का संचार होता है। नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कोटपुतली बहरोड के शाहजहांपुर में नर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश में चल रहे ग्राम रथ अभियान के तहत जिला प्रभारी मंत्री रात्रि चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कल कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर पहुंचे। उन्होंने रामपुरा खुर्द में रात्रि चौपाल में भाग लिया। उधर उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई की। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने जैसलमेर जिले में 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। श्री खिवसर ने कल जिले की गोमट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान ये ऐलान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: FM 110.7 मी

0: श्रोता अभी सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका। आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय होगा लू एवं तापाघात से बचाव विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से कमलेश मीणा की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज हमारे साथ है डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, और आज जो इनसे बातचीत कर रहे हैं उसका विषय है लू एवं ताप घात से बचाव। यानी ये जो मौसम चल रहा है इसमें लू से, गर्मी से किस तरह से आदमी बच सकता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब आज आपको देंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमारे आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो में आपका स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: और डॉक्टर साहब मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि लू और ताप घात से बचाव किस तरह से हमारे श्रोता करें।
2: देखिए, आपने समाज हित में बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अपने मौसम परिवर्तन के हिसाब से शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, और गर्मियों में खास तौर से यदि गर्मी बहुत अधिक पड़ती हो, जैसे अपने शरीर का तापक्रम 38 डिग्री से नीचे ही 37.4 अपन लोग जो मानते हैं, तो इसके आसपास के वातावरण में तो अपने शरीर में कोई ऐसे हानिकारक परिवर्तन नहीं होते। पर यदि वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप सुन रहे हैं 47 डिग्री 48 डिग्री, तो उससे अपने बॉडी में निसंदेह ऐसे परिवर्तन आते हैं जो शरीर के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। अब गर्मियों में अपने शरीर से पसीना जो निकलता है शरीर का, उसमें नमक की मात्रा भी होती है, अपने ग्लूकोज की मात्रा भी होती है, और अन्य भी खनिज पदार्थ निकलते रहते हैं। तो यदि आप सावधानी नहीं बरतें तो आपके डिहाइड्रेशन, यानी सबसे आसान बात है कि भी शरीर में पानी की कमी आ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और पानी की कमी आने से जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो अवश्य होंगे। तो अपने गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ा बचाव है, अपने कहावत है कि बचाव ही उपचार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो जो अपने पीक टाइम है गर्मी का, जैसे दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक,
1: बिल्कुल,
2: उस समय यदि आप बाहर निकलने से बचते हैं तो कोई आपके लिए बुराई नहीं है उसमें। दूसरा, गर्मियों में जब ये तेज गर्म हवाएं चलती है वो और ज्यादा घातक होती हैं, तो उसमें आपके और ज्यादा नुकसानदेह परिवर्तन होते हैं। तो इसमें अपने भाइयों बहनों को ये बात समझने की जरूरत है, हमारे दो कंडीशंस कहलाती है। एक तो है कि भाई लू लग गई, जिसको अपन सामान्य भाषा में लू लगना जो लोग समझते हैं। एक है ताप घात, ये सबसे खतरनाक है, इसको हम वो बहुत ज्यादा ही गंभीरता से लेते हैं, इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो गर्मियों में एक तो अपने पानी का बैलेंस बॉडी का, यानी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पिए, सबसे बड़ा मुख्य सूत्र ये है। तो पानी जब पीते हैं तो उसमें जो अपने भारतवर्ष में हरेक घरों में जो पुरानी प्रथाएं चल रही है, जैसे नींबू की शिकंजी है, दही है, छाछ है, कैरी का पानी है, इवन कुछ प्याज का रस है, तो ये चीज़ें आप भरपूर मात्रा में सेवन करके अपने कार्यस्थल पे आए। और जो अपने बाहर जो खुले में काम करते हैं, खासतौर से आप देखिए किसान भाइयों को खेती में काम हमेशा करना पड़ता है, वो न तो सर्दी से घबराते हैं अपने भारत के किसान भाई बहन, न गर्मी से डरते हैं, कार्य करते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: पर वो उसके लिए आदि हो जाते हैं, और वो अपने पानी पीने का पेय पदार्थ जो है इनका भरपूर सेवन करना चाहिए। और जो इन दिनों में ये मौसमी संतरा, इवन तरबूज, खरबूज, ये पदार्थ भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब अब बात ये आती है कि इस मौसम में कहते हैं ना कि चूरू एक ऐसी जगह है यहाँ पर सर्दी सबसे ज्यादा पड़ती है, गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, और सबसे बड़ी समस्या जब गर्मी आती है तो डिहाइड्रेशन की हो जाती है। कपड़ों का क्या रोल है इसमें, गर्मी से बचने के लिए?
2: बिल्कुल, बहुत ही सही बात आप पूछ भी रहे हैं। देखिए, अपने भारत में जो रंग के प्रति आकर्षण है, ये आप बरसों से पीढ़ियों से देख ही रहे हैं। अपने सूर्य की किरणों को कुछ जो रंग, कुछ जो कपड़े हैं,

0: वो ज़्यादा अवशोषित करते हैं और उनको वापस परावर्तित नहीं कर पाते, और कुछ जो कपड़े हैं वो उस रेज को अपने सूरज को परावर्तित कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सफ़ेद रंग वाइट कलर है, ये कंपेरेटिवली अन्य रंगों की तुलना में ठंडा कहलाता है। और ढीले कपड़े होने चाहिए ताकि अपने शरीर का पसीना उड़े। आजकल जो नए जमाने के टाइट कपड़े हैं, जीन्स वगैरह हैं, तो इनको आप बहुत सावधानी से पहने। खुले कपड़े बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि ये जो छतरी का प्रयोग है, शरीर को ढकने का प्रयोग है, तो ये तेज हवाओं से
1: बचने की,
0: गर्म गर्म की जो तेज गर्म हवाएं हैं लू लगने से ये बचाती हैं। और छायादार स्थान में यदि आप हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। परंतु आप ये देखिए, किसी भाई बहन को लू लग गई तो इसको पहचाने कैसे कि भी किसी को लू लग गई? तो आप देखिए कि कोई भाई बहन यदि कार्य करके अपने घर आ रहा है या धूप से निकल के अपने कार्यस्थल पे जा रहा है, तो अचानक उसको चक्कर आना,
1: अच्छा,
0: और घबराहट होना, शरीर का तापक्रम बढ़ जाना, इसमें हल्के रूप में तो शुरू में पसीना आता है, यदि पसीना आना बंद हो जाए वो स्थिति बहुत घातक है। पसीना आना भी उतना ही जरूरी है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। यदि पसीना आना बंद गया तो टेम्परेचर उस भाई बहन का बहुत अधिक सडनली बढ़ जाएगा। तो यदि आपके जी घबराना, चक्कर आना, थकान है, आपका बदन दर्द कर रहा है, हल्की सी बुखार महसूस हो रही है, तो ये तो है आपके लू लगने के लक्षण। तो यदि ये हैं तो आप आराम करें अपने शरीर में। यदि आपको बुखार महसूस हो रही है तो ठंडे पानी की पट्टियों का प्रयोग करें, अधिक मात्रा में उनको छायादार स्थान में रखते हुए, कोई कमरे में जहाँ कोई एसी कूलर है वहाँ लिटा के पानी का वो जो तरल पेय पदार्थ है उनका बहुत अधिक सेवन कराएं, और आराम आए जब तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो अपने चिकित्सक से सलाह लें। किंतु जो तापघात है वो बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा साबित हो सकती है, उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री से भी अधिक हो सकता है, उसमें इंसान को बेहोशी आना, और बिल्कुल ऐसे आपको खुद महसूस होगा शक्ल देख के कि भाई अचानक आदमी बेहोश हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अस्पताल में ही उपचार जाना उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें हम इवन बर्फ की पानी की उसकी पट्टियां करके उसका टेम्परेचर उतारते हैं और उसी हिसाब से उसका मेडिकली उपचार भी किया जाता है। तो यदि हीट स्ट्रोक की संभावना है तो तुरंत नज़दीक के अस्पताल में पहुँचे, और लू लगने तक की बात है तो आप उसको घर पे आराम से ठीक कर सकते हैं।
1: अब बात आती है बच्चों की और बुजुर्गों की,
0: जी
1: उनके लिए क्या कहेंगे?
0: देखिए, अपने परिवार में एक वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है। वल्नरेबल है मतलब हर एक किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
1: जी जी,
0: बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और महिलाएं,
1: जी जी,
0: या अन्य कोई भाई बहन जो किसी बीमारी से ग्रसित हो। आपने पहले कोरोना जो आया था उसमें भी देखा होगा कि भाई किसी के ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीज है, कोई कैंसर है, इस टाइप के जो रोगी हैं ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कामकाजी महिलाओं को भी बहुत अपने को उनको हिफाजत से रखना है। छोटे बच्चे धूप में बेमतलब बाहर नहीं निकलें। सवेरे अपना जो भी एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योग है, खेलना कूदना सवेरे कीजिए। सूर्य भगवान के पास जाने में कतई संकोच नहीं है। सवेरे की जो किरणें हैं वो बहुत ही शरीर में विटामिन डी बनाने में अपने फायदेमंद होती है। धूप में ना निकलें और पानी और तरल पेय पदार्थों का भरपूर सेवन करें। और मैंने जो लक्षण बताए उनमें से कोई भी बात है तो तुरंत अपने परिवारजनों को सूचित करें ताकि वो चिकित्सीय सलाह ले सके।
1: अब डॉक्टर साहब, एक बात ये आती है इस बीच में,
0: जी
1: खाने पीने का क्या है?
0: जी देखो, खाने पीने में आपको अपने शरीर का मुख्य जो अपना जो रूटीन का आपका कार्यक्रम है, आप एनर्जी रिच फ्रूट है, एनर्जी रिच फूड है,
1: जी, जी
0: ये अवश्य खाएं। बाजार के बने तले भुने ज़्यादा जो ये पैकेज्ड फूड है इनसे बचें। मेन है अपने बॉडी को स्वस्थ रखना, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आपके संतुलित भोजन आएगा। आप ये जो सवेरे भिगो के जो जितने भी अपने जो अपने अंकुरित भोजन है इनका सेवन करें, फल फ्रूट का सेवन करें, तो प्रतिदिन खाने के साथ साथ हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइजेज जो हैं, यानी थोड़ा बहुत व्यायाम और प्राणायाम जरूर से करें। थोड़ा बहुत आपका चलना फिरना है, वॉकिंग है, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज प्रतिदिन करें, यह आपके जीवन को हमेशा उम्र बढ़ा

0: आती है और स्वस्थ रखती हैं। और जो ये ओबीज पर्सन कहलाते हैं यानी मोटापा, यदि आप ऐसे आप बहुत अधिक घी खा रहे हैं, बहुत अधिक इस टाइप के फैटी फूड्स खा रहे हैं और आपका जो जो आपका कार्य करने का तरीका सारे दिन बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये आपके मोटापा डेवलप करेगी। और मोटापा यदि डेवलप है तो ये आपके हीट स्ट्रोक या लू लगने की संभावनाएं उतनी अधिक होंगी। तो यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको घूमना फिरना, सवेरे आपका पैदल चलना, हल्की एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, जितना आपका खाना पीना ज़रूरी
1: है। अब आपने लू से बचने के लिए और इस मौसम में जैसे छाछ की बात की, पीने के लिए नींबू के पानी की बात की, सादा पानी की बात की, दही भी खा सकते हैं आप
0: जी,
1: और आपने एक बात की कि ये जो कैरी का पानी
0: इसकी बात की, लस्सी है।
1: अब बात ये आती है कि हमने बहुत सारी बात की लोगों से लू और जो ताप घात है इससे बचाव के लिए, लेकिन फिर भी हमारी इस बातचीत में ऐसी कोई बात रह गई हो जो आप तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं?
0: जी जी,
1: तो आपका स्वागत है।
0: देखिए, मेरा सभी भाई बहनों से ये कहना है कि आप किसी भी चीज़ से घबराए नहीं, ये मौसम परिवर्तन है, प्रतिवर्ष आएगा। मैं आपको कुछ अन्य बातें अवश्य बताना चाहूँगा। अपने आसपास का कोई भी खाली स्थान है तो उस पे आप पेड़ पौधे अवश्य लगाएं।
1: जी,
0: अभी ये बारिश का मौसम आएगा ताकि छाया आपको मिलेगी। पशु पक्षियों के लिए आप जितना अपने खुद मानव जाति का ध्यान रखते हैं तो उनके पीने का पानी, उनके खाने का, यानी आपका पर्यावरण यदि सही रहेगा तो अगले वर्ष हम ये सोचेंगे कि अपने इतना गर्म वातावरण नहीं रहेगा। तो पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास जानवरों का भी आप उतना ही ध्यान रखें, पक्षियों के लिए आप पानी पीने के वो परिंदे लगाएं, उनको दाना डालें। और एक भाई यदि एक पेड़ लगाता है प्रतिवर्ष तो अपने भारत में 140 करोड़ पेड़ पैदा होंगे, जिससे अगले साल अपना वातावरण अच्छा रहेगा, खूब बारिश आएगी, किसान भाई बहन भी खुश रहेंगे और ये जो हीट स्ट्रोक की समस्या पर्यावरण की वजह से ही काफी हल हो जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही। अगर हम इन बातों पे विचार करेंगे, मनन करेंगे और कोशिश करेंगे करने की, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। यही बात पेड़ पौधे लगाने की डॉक्टर साहब ने कही कि अगर परिवार में से एक भी पेड़ पौधा लगाता है, एक ही, और तो वो भी बहुत हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, किसी का बर्थडे है, किसी की जयंती है, किसी की पुण्यतिथि है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, इन पे भी अगर एक एक पेड़ लगाने की कोशिश करें
0: जी, बहुत अच्छा,
1: तो बहुत अच्छा पर्यावरण में अच्छा करने में साबित होंगे। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने लू एवं ताप घात से बचाव के बारे में बहुत ही अच्छी सारगर्भित जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुँचाने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता भी सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था लू एवं तापाघात से बचाव विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से कमलेश मीणा की बातचीत। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूर केंद्र से बोल रहे हैं।

वृक्षारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, वृक्षों का पोषण और संरक्षण भी आवश्यक है। वृक्षारोपण एवं पोषण पर्यावरण संतुलन का सबसे बड़ा उपाय है। आओ वृक्ष लगाएं।

अशुद्ध जल को उबालने से उसको प्रदूषित करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अपने ऑटोमोबाइल वाहन का हॉर्न अनावश्यक ही न बजाएं, इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है।

आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार। मनीष भारद्वाज का।

श्रोताओं के आज के कार्यक्रम का पहला कमेंट हमें मिल रहा है गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा का। आप लिखते हैं, अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत मिल सके। प्रेम की धारा बहती है, जिस दिल में चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रहना ही ठीक है, जिंदगी जीने की चाहत तो बनी रहती है। जिंदगी ऐसी पाठशाला है जहां क्लास बदलती रहती हैं परंतु विषय नहीं बदलते। कौन कहता है खामोशियां खामोश होती हैं, कभी खामोशियों को खामोशी से सुनो। खामोशियां वह कह देती हैं जिनकी लफ्जों को तलाश होती है। हम जहां प्रार्थना करते हैं केवल वहीं ईश्वर नहीं होता, जहां हम गुनाह करते हैं वहां भी होता है। श्रोताओं, इनकी बात जो दो दो पंक्तियों के माध्यम से शायराना अंदाज में वेद मिड्ढा जी ने जो बात कही है वो हमारे जीवन के सार की बात है, और हमें भी इन छोटी छोटी चीज़ों को इसी प्रकार से ख्याल में रखते हुए जीवन को जीना चाहिए।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप FM चूरू से सुन रहे हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक।
1: प्यासा ये मन खो गया।
0: अगला कमेंट इस कार्यक्रम के लिए हमें मिल रहा है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा और काफिर भाई का। आपने केवल दो पंक्तियों का कमेंट हमें लिखकर भेजा है, लेकिन शायद ये हमारे इस समय के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हम आपका कमेंट हमारे सभी साथियों से शेयर करेंगे। आपने लिखा है, ईंधन की बचत करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर देश हित में सहयोग करें। श्रोताओं, ये बात सच में ही दो पंक्तियों की है और शायद ये बात हम सभी जानते भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें हम जानते हुए भी केवल कुछ निजी स्वार्थ कहें या केवल कुछ अपनी सहजता खत्म ना हो वो माहौल कहें या एक लापरवाही कहें, हम इन चीज़ों को जानते हुए भी मिस कर देते हैं। हम चाहते सभी हैं कि ईंधन की बचत करें, ऊर्जा की बचत करें, देश हित में है ये बात, लेकिन जब हमारी सुविधा की बात आती है तब हम ये भूल जाते हैं। हम एक स्थान से दूसरे शहर पर हम सार्वजनिक वाहन है, ट्रेन है, उसके माध्यम से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें अगर हमारी टाइमिंग सूट नहीं होती है, हमें थोड़ी परेशानी होती है, तुरंत हम ये निर्णय लेते हैं कि अपनी निजी गाड़ी से या टैक्सी से हम वहाँ जाते हैं। यहीं पर वो निर्णायक बिंदु होता है कि क्या हम थोड़ी सी असुविधा देश के लिए झेलने के लिए तैयार हैं या नहीं, और इसी बिंदु पर जो हमारा निर्णय है वो इस चीज़ का परिचायक होता है कि हम देश हित को सर्वोपरि रखते हैं या निजी हित को। वर्तमान समय के दौर में हमें ईंधन की, पेट्रोल की, डीजल की बचत करनी है, और इसके बचत करने का तरीका एक ही है कि हम इन चीज़ों से चलने वाले वाहनों का कम से कम उपयोग करें, और वह उपयोग कम से कम इस तरीके से ही हो सकता है कि हम उन साधनों का इस्तेमाल करें जो पेट्रोल डीजल से ना चलते हों, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सार्वजनिक साधन के रूप में ट्रेन है, हम उसका उपयोग करके इन पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। इसलिए आज का ये जो रामचंद माखीजा और काफिर भाई का संदेश है वो ना केवल इनका संदेश है बल्कि ये आज के समय की आवश्यकता है, और हम इन विचारों को अपने में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोता इस वक्त एफएम चूरू से सुन रहे हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। श्रोता, इस कार्यक्रम के लिए अगला कमेंट हमें मिल रहा है हमारे श्रोता विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वानी आर्व, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी, आप सभी लिखते हैं दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। आपने हमारे समाज को आईना रखते हुए अपने कमेंट लिखे हैं कि परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि वो एहसास है जहां इंसान बिना किसी डर और दिखावे के खुद जैसा होता है। दुनिया में हर जगह इंसान को अपने होने का सबूत देना पड़ता है, लेकिन घर ही एक ऐसी जगह है जहां बिना कुछ कहे भी अपनापन महसूस होता है। जब बाहर की भागदौड़, लोगों की बातें और जिंदगी की परेशानियां मन को थका देती हैं, तब माँ की आवाज़ सुकून बन जाती है, पिता का भरोसा हिम्मत देता है, भाई बहनों की नोकझोंक भी मुस्कान बन जाती है और बच्चों की हंसी घर को जन्नत जैसा बना देती है।

दुनिया अक्सर इंसान की हैसियत पैसा और सफलता देखती है, लेकिन परिवार आपकी कमजोरियों में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। यही वो रिश्ता है जहां हारने पर ताने नहीं सहारा मिलता है और टूटने पर सवाल नहीं प्यार मिलता है। जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ वक्त के साथ बदल जाएंगे, लेकिन परिवार वो छांव है जो हर मौसम में साथ खड़ी रहती है, क्योंकि सच्चा परिवार खून से नहीं दिलों के विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण से बनता है। श्रोताओं, हम भी इनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि जब हम पूरी तरह से परेशान हो चुके होते हैं तब ऐसी कंडीशन में परिवार ही एक जगह होती है जहां हम परेशानियों में भी सुकून से बैठ सकते हैं।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी चूरू से प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों में 5 अप्रैल से होने जा रहा है परिवर्तन। आप सुनेंगे प्रत्येक सोमवार की सुबह 9:15 पर फिल्मी कवालियों का कार्यक्रम महफिल। 9:15 पर ही प्रत्येक गुरुवार को आपके लिए लेकर आएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी। श्रोताओं, 9:30 पर सोमवार की सुबह आप सुनेंगे किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर ही बुधवार की सुबह आप सुनेंगे किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार। दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दूसरे और तीसरे रविवार को हम आपके लिए लेकर आएंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो चूरू। और साथ ही आपको बता दें, श्रोताओं के विशेष अनुरोध को देखते हुए इस कार्यक्रम का हम पुनः प्रसारण करेंगे मंगलवार की रात 10 से 11 तक। श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मेल बॉक्स अब शनिवार के बजाय सोमवार को दिन में 2:30 से। इसी प्रकार दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुनेंगे दिन में 2:30 आपका अपना फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। श्रोताओं, एक और परिवर्तन, आपका अपना पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम बन भावन अब आप सुनेंगे प्रत्येक मंगलवार को रात 9:15 से 10 तक। सुनते रहें आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रम।
1: श्रोता, इस वक्त FM चूरू से सुन रहे हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। श्रोताओं, अगला कमेंट इस कार्यक्रम के लिए हमें मिला है हमारे श्रोता सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर से। लिखते हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आप लिखते हैं परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, लेकिन मनुष्य का समाज के प्रति परम कर्तव्य है कि वह ईमानदारी अहिंसा से जीवन को आगे बढ़ाए और समाज हित में अपना पूरा योगदान दे, परिवार में भाईचारा और समाज हित में अपना कर्तव्य निभाए, समाज में कमजोर लोगों की मदद करना, अशिक्षित परिवार को शिक्षा के साथ जोड़ना, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना, इस तरह समाज हित में अपना पूरा योगदान हमें देना चाहिए। जी रेवाड़ साहब, आपने परिवार के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण के लिए तीनों बातें अपने इस कमेंट में लिखी हैं और शायद हमारा सभी का यह कर्तव्य है कि हम समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति पूरी तरह ना केवल जागरूक रहें बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते भी चलें।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। आप भी इस कार्यक्रम में अपना कमेंट लिखकर भेज सकते हैं आकाशवाणी चूरू के फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर। इसी के साथ ये आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिएगा अपने साथी मनीष भारद्वाज को। FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र मुंबई से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं। कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है। तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू।
0: जी
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर यह बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहाँ की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी, लेकिन
0: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
1: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं हैं उससे निगड़ित होती है, तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहाँ पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
0: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
1: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं नेगेटिव

0: ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं, इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से, और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने। हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
0: देखिए, हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है, और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूँगा।

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या-क्या हैं?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है। ये आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफ़ेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना या हल्की सी कमज़ोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे
0: अच्छा।
1: इनका जो शरीर में, अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफ़ी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियाँ आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
0: जो मेजर होता है।
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफ़ेद दिखने लगते हैं। माएँ देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दें, तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियाँ होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियाँ, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती हैं, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
1: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है। ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
0: बीटा
1: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोहों की कमी हो गई या किसी और चीज़ की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगना ही लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने के वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है।
0: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा।
1: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं। बच्चों में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है। कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
0: जैसे आपने ये भी बताया, तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकुड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
1: आप देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रक्त संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण, या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
0: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से, इसका रीजन जो है कि भाई क्यों क्यों होता है? तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी, तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता, जैसे कि आपने कहा, हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है?
1: इसमें अब भी देखिए, ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं, ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है, मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में ये बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को कैसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है, वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है,

0: तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें, तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक आध कैसे ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है, और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है तो बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज़्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज़ की तकलीफ होती हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग, मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमज़ोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का, और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए, कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयाँ, ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज़ में, पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
0: आपने बताया है कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना ज़रूरी होता है?
1: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाने कितना ज़रूरी होता है,
0: कब,
1: तो शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकारमान भी बड़ा होता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ एक यूनिट हर महीने में लगता था, फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
0: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
1: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोह की मात्रा ज़्यादा नहीं रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रखती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पर कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
0: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी

0: सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है।
1: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारी शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएँ बन चुकी है, थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना ज़रूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ सकती है।
0: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा।
1: एक दो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जैसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फ़ायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगी। पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली एक कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते रहने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाजी रही है।
0: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी, वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
1: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है, भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहता है।
2: भारत

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नज़र में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है,

0: आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहाँ से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है, ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं AB या O, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है।
1: ओहो।
0: और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक हाथ ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है। और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है। और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो। तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो। लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
0: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है, इसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो लेके जाने वाला है उसे भी अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है। तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया किस्सा। जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शंस का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है, पर होती है वहां पे। तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी, उसमें और एक नई बीमारी लगी जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है। ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे, ये तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं। और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट से काफी सारे साइड इफेक्ट्स के साथ है। नई टैबलेट्स आए, उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में, और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी NGO से, किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं है?
0: जरूर मदद प्राप्त हो सकती है। लेकिन देखिए, एक जानना जरूरी है कि ये जो NGOs है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है, अगर इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है। जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है। अगेंस्ट थैलेसीमिया करके एक है, एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बम्बई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
1: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या

0: सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोहा कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीज़ों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहाँ तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज़ आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है, जेनेरिक दवाइयाँ जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध हैं?
0: दुर्दैव की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयाँ चल रही है इसमें ज़्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरीके से होता है, फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना जेनेरिक्स बनाते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियाँ हैं इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप देखा है जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपने इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: कि वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हर एक की लड़ाई है, हर एक ने अपनी अपनी लड़नी है, आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चलो रे करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है कहानी फिल्म से, मैं सुनना चाहूंगा।

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाओ, सावधानियां और रोकथाम?
1: देखिए, कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है।
0: जी,
1: मेन ये चीज़ सीखना ज़रूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना। अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहाँ पे शालेय एजुकेशन देखे, इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रेटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे, तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है।
0: जी जी,
1: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारे लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
0: जी।
1: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
1: देखिए, कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज के तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेड क्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशंस पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपल्सरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपल्सरी कही गई, तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं,
0: तो इंडिविजुअलिटी को,
1: इंडिविजुअलिटी जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त पे उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर, वैसे

0: मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो। समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ ज़रूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
0: देखिए, अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाया जा रहा था। एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है। रोग पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पर भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा,
0: वो
1: जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना

0: ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा, अगर समझो आधी बीमारी है एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं है तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में, और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं।
1: हाँ.
0: तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की यह है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, यह हमें जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो, तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस से होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्डिंग टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
1: और डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
0: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज़्यादा फर्क नहीं करती है। यो जो बीमारी होती है अपने, अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
1: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है, और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है, और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का, दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए, हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वैसली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज की कलाकार होंगी शकुंतला भाटी एंड पार्टी। दिन में 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत दिन में 1:05 पर। चर्चा होगी AI और सोशल मीडिया क्या हमें नज़दीक ला रहे हैं, मन की उलझन को सुलझाएं। जानकारी दी जाएगी PM 15 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। दिन में 2:00 मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में तराने नए पुराने। शाम 4:58 पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:00। चर्चा होगी डिजिटल मार्केटिंग में करियर। एक और चर्चा होगी मल्टी स्किल्ड पर्सन आज की जरूरत। जानकारी दी जाएगी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे शाम 5:55 पर। शाम 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 7:00। चर्चा होगी सरकारी योजनाओं के फायदे, मिट्टी परीक्षण के फायदे। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी 90 साल, कुमार अजय से अमित कुमार की भेंट वार्ता। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे News@9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। मन भवन यह कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए हेमलता को। फिल्म का नाम है अंखियों की झरोखों से। गीत संगीत रविंद्र जैन का।

0: बॉबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गायिका थी लता मंगेशकर।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आप आए बाहर आई, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। अंदाज फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम के अगले पायदान पर सुनिए गोविंद मुनीस के बोलों को लक्ष्मीकांत पैरेलाल के धन पर। आवाजें हैं आशा भोंसले और किशोर कुमार की और यह फिल्म है आंसू बन गए फूल।

0: आनंद बख्शी के बोलों को अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी की, और ये फिल्म थी चरस।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत की अगली पायदान पर सुनिए दामिनी फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगर की। गीत रचना समीर की है और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

चाहत फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
5: क्यों?
4: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
5: अच्छा, तुमने खुद देखे?
4: हाँ।
5: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
5: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ, हाँ,
4: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ,
4: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी
4: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
0: जी।
4: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
0: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
4: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
5: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक
5: में खेले भरपूर।
4: आग बरसाती धूप।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
7: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
8: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
9: इन्हें हमारा सलाम।
8: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
10: साथियों नमस्कार।
8: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
10: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
8: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
10: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
8: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
10: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
8: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
10: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
8: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
10: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा।

0: हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गन

0: दुश्मनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर में शकुंतला भाटी एंड पार्टी के गाए लोक भजन। प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

शकुंतला भाटी एंड पार्टी के गए इस लोक वचन के साथ ही अब आज का लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार लेके जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर यह निर्णय किया। 3 मई को हुई इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक की आशंका है। एनटीए की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर यह साफ हो गया है कि इस परीक्षा प्रक्रिया को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। एनटीए जांच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपेगी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी नीट परीक्षा से जुड़े कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा से पहले एक गैस पेपर अभ्यर्थियों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। एनटीए की ओर से जल्दी ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए

0: दिए गए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि नर्सें देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करती है और राष्ट्रीय प्रगति को गति प्रदान करती है। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सेवाभावी नर्सिंग कर्मियों का सम्मान समारोह रखा गया है। भाजपा नेता हेमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचेंगे, बाद में स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 14 मई को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। वे पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम रातानाड़ा सर्कल पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री का इससे पहले मेड़ता के संस्थापक राव दूदा राठौड़ की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत कल कोटा में कार्यशाला का आयोजन हुआ। सियाम सभागार में हुई इस कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संरचनाओं, कुओं, बावड़ियों और पानी के स्रोतों को बचाना होगा। इस मौके पर उन्होंने जल ग्रहण विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसके तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध बजरी खनन में लगे 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 42 वाहन भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में मौसम के कल दो अलग अलग रूप देखने को मिले। एक और पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा, वहीं दूसरी ओर उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर चला। बाड़मेर में दिन का पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके साथ ही बाड़मेर लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना रहा। जोधपुर, बीकानेर और फलौदी में भी झुलसाने वाली गर्मी रही। उधर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित कई इलाकों में आंधी और गरज के साथ बरसात हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज मैं आपके साथ हूँ महिमा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

बहनों, कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य जितनी बाहरी उपलब्धियों में बढ़ता जा रहा है या बढ़ रहा है, उतना ही भीतर की उलझनों से जूझ भी रहा है, या हम कह सकते हैं कि इतनी उलझनें मन में भरी हुई हैं, इतने विचार हैं, इतनी सारे चीज़ें जो मन में हैं उनसे आदमी नहीं निकल पा रहा। तकनीकी प्रतिस्पर्धा, निरंतर बदलते परिवेश, ऐसी मानसिक स्थिति बना दी है कि व्यक्ति चाह कर भी इनसे निकल नहीं पाता और इन सब के बीच में डूबता ही चला जाता है। सच पूछे तो मन की उलझनें अचानक ऐसे जन्म लेती हैं कि धीरे धीरे वो हमारे मन में घर कर लेती हैं और बिना कहा दबाव कह सकते हैं या फिर असमंजस की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दोराहे पर आकर हम खड़े हो जाते हैं, न कोई डिसीजन ले पाते हैं और न ही उस स्थिति से निकल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुकी है या फिर हम परिस्थितियों का सामना जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाना भी यही है कि हम धीरे धीरे अपने आप को अगर थोड़ा थोड़ा बदलते जाएंगे तो हम अपनी जो दिनचर्या है, अपनी सोच है, अपने काम है, उन पे अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो हम इन सभी उलझनों से या तो निकल जाएंगे या फिर उलझने आती हैं उनका सामना करेंगे या फिर वो उलझने आएंगी ही नहीं। उलझने नहीं आए ऐसा तो संभव नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में उलझन और विचार कुछ भी आते ही रहते हैं और जाते भी रहते हैं, तो उनका सामना करना हमें अपने आप को ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारी सहायता इस

0: चीज में नहीं कर सकता। और अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो हम उसे यही कहते हैं कि मानसिक स्थिति खराब हो जाती है या हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, कोई हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन सब स्थितियों से पहले की जो स्थिति है हम उसको अगर सुधार लें तो हमें आगे इतना उलझना ही नहीं पड़ेगा डॉक्टर्स के चक्कर में, या फिर हम डिप्रेशन में आ जाएँ, हम और कुछ करें। उससे पहले हम करें कि अपने जो विचार हैं, जब भी मन में बहुत ज़्यादा विचार हो, शोर हो, तो उन विचारों को केवल एक ही तरीके से देखें, उनके अंदर हमें उलझना नहीं है। हम सुबह सुबह 5 से 10 मिनट के लिए आँख बंद करके बैठें और गहरी गहरी जो सांस हैं वो लें। ये नहीं, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं तो उसमें तो हम एक नासिका से श्वास लेते हैं और दूसरी का नासिका छिद्र से हम श्वास को छोड़ते हैं, तो इसमें हमें मेडिटेशन समझें या फिर आंख बंद करके हम गहरी गहरी सांस, लंबी लंबी सांस लें और 5 से 10 मिनट तक अपने मन में कोई भी विचार न आने दें और गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होंगी। ऐसा नहीं है कि पहले दिन बैठे और पहले दिन ही सारे विचार गायब हो जाएं। समय लगता है कोई भी चीज़ में, तो ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे शौक़ क्या क्या हैं ये हमें पता होता है। किसी का लिखना होता है, किसी का म्यूज़िक सुनना होता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को टहलना अच्छा लगता है, बाहर जाना अच्छा लगता है, दोस्तों से बातें करना, रिश्तेदारों से बातें करना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम बात करके अपने मन को हल्का करते हैं, कर सकते हैं। ना कि वो भी कुछ कर नहीं पाते, रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, वो कर तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन हम अपना जो मन का बोझ है वो हल्का अगर कर लेते हैं, किसी के सामने अगर हम कुछ कह देते हैं, तो वो चीज़ हमारे मन में घर नहीं करती, या फिर हमें कोई सुझाव भी मिल सकता है। तो ऐसा करें कि जब भी मन खराब होता है, उलझन में होता है, तो हम किसी न किसी से बात कर लें, अच्छा लाइट म्यूज़िक सुने, आँख बंद करके हम थोड़ी देर सो सकते हैं और म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर लिखने का शौक़ है तो अपने विचार हम लिख भी सकते हैं, चाहे कविता के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, या फिर हम जो दिनचर्या है वो भी अगर हम अपनी लिख देते हैं तो वही बात होगी, जैसे हम किसी को अपनी बात कह देने से मन हल्का होता है, वैसे ही लिख देने से भी मन जो है हमारा हल्का हो जाता है। वर्तमान में जीना सीखें। हमारे साथ पिछले दिनों में या पिछले सालों में किसने, रिश्तेदार ने, साथियों ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसको सोचने के बजाय हमारे जीवन में जो चल रहा है उसके साथ अगर हम चलेंगे तो हम अपने आप ही अपनी उलझनों को सुलझाते हुए चले जाएंगे। मानसिक जो हमारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है कि हम कुछ भी काम जो है वो समय पे नहीं कर पाते, चाहे घर का हो, चाहे हमारे ऑफिस का हो या बाहर का हो, तो उसमें हम अपनी एक सूची बना सकते हैं जिससे हम याद रहेगा। हमें अगर हम सूची बना लेते हैं तो हमें उस सूची को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो काम हम लिख लेते हैं, आप ध्यान करिएगा कि कभी भी उस काम को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो काम हमें करना है। इसलिए अगर हम सूची बना लेंगे तो काम हमें खुद ब खुद याद रहेगा कि हमें किस समय पर कौन सा काम करना है। और सकारात्मक सोच जो कि हमेशा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ाती है, और जैसा हम अच्छा सोचेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे, हम सामने वाले के लिए भी वैसा ही सोचेंगे अच्छा, तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा, और नहीं भी सोचेगा तो हम अपने विचार खराब क्यों करें। हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपनी सारी उलझनों को दूर रखें।
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।

0: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
1: कृषि, विज्ञान, कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
0: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
1: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
0: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।
2: बहनों, जमाना जो है, या सोशल मीडिया का आप समझें या फिर एआई आजकल हो गया है, तो एआई और सोशल मीडिया में अंतर तो हम सबको पता है, लेकिन एआई क्या है? और आगे चलकर हम इसमें बात करेंगे कि हमारे रिश्तों में कहाँ तक ये दूरियां ला रहा है या नज़दीकियां ला रहा है, या हम इसमें उलझते जा रहे हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है, जिसका लक्ष्य ऐसी मशीनें या सिस्टम बनाना है जो इंसानों की तरह सोच, सीख, निर्णय लेने और जटिल कार्यों को सुलझा सके। यानी कि जैसे ही हम अपना मोबाइल खोलते हैं या अपना सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं, और अगर हम किसी भी विचार पर असमंजस की स्थिति में हैं या किसी जानकारी को जानना चाहते हैं, तो हम तुरंत एआई के माध्यम से और वो सारी जानकारी एक मिनट में हर विचार की तरफ से और हमारे सामने सारे ऑप्शन उसके हमारे सामने आ जाते हैं। हमें जो अच्छा लगे या जो सही है, हम उसमें से भी वो चुन सकते हैं। एक सेकंड की देरी होती है और सारी चीज़ें हमारे सामने यूं की यूं आ जाती हैं। तो मशीनों के माध्यम से जो इंसान का काम करता है, वही काम मशीनों के माध्यम से हो रहा है। और इसी तरीके से जो बड़े डेटाबेस और प्रोसेस करके जो पैटर्न काम करते हैं, वही कंप्यूटर काम न करके, कंप्यूटर में एआई ऐसा सिस्टम आ गया है कि कुछ ही जैसे उसका उपयोग चिकित्सा पद्धति में, यातायात प्रबंधन और ग्राहक जो सुविधा है उसके लिए उपलब्ध किया जा रहा है। हर चीज़ में अगर एआई का हम कहें तो जमाना आ गया है। हर चीज़, जैसे सेल्फ ड्राइव कार भी है, वो इसी में है कि वो एआई के माध्यम से ही हम संचालित होती है, कि उसमें मनुष्य नहीं बैठता है और कार अपने आप चलती है, ट्रैफिक में भी चलती है, कहाँ रोकना है, कहाँ रेड लाइट है तो वो रुकती है, अपना सिस्टम फॉलो करती है, जो भी ट्रैफिक रूल है, तो सब चीज़ एआई के माध्यम से संभव है। लेकिन अगर हम बात करें अपने रिश्तों की, कि रिश्तों में क्या एआई जो है और सोशल मीडिया हमें एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं, तो ये एक विचारणीय एक टॉपिक है। कई बार तो लगता है कि हर जो तकनीक अगर आती है, नई तकनीक, वो अच्छी ही होती है। बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी मुश्किलें हमारी दूर होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ नई तकनीक जो है वो हमें एक दूसरे से दूर कर रही है। हमारा काम कम तो हो रहा है, लेकिन कोई बेरोजगार भी हो रहा है। इसी तरीके से हमारे जो आपस के जो पारिवारिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, उनमें भी हम कई बार तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिस्टम में, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन में नज़दीकियां होती हैं। और बाकी अगर हम देखें कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, या फिर गर्मियों की छुट्टियों में हम एक समय याद करते हैं आज से 15 या 20 साल पहले का, तब घर में अगर हम इकट्ठे होते थे छुट्टियों में, नानी या दादी के घर पे जो भी बच्चे आते थे, तो सब एक साथ बैठते थे, खेलते थे, बातें करते थे, कुछ गेम हम बड़ों के साथ खेलते थे, अंताक्षरी करते थे, चाहे दिन हो या रात हो, अपने अपने ग्रुप में सब अपनी अपनी मस्ती में चूर रहते थे। खाना बनाते समय महिलाएँ भी एक दूसरे के साथ रहती थी, तो वो एन्जॉय ही करती थी अपने विचारों से, कुछ ऐसी इंटेलिजेंसी की बातें भी करती थी कि एक दूसरे के विचार अगर उनको पता चलते थे तो नया कुछ सीखने को मिलता था। अब सीखने के लिए तो एआई बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि जो विदेशों में बहुत अच्छी तकनीक है या बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं, वो हमें सब सीखने को मिल रहा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान तो हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, तभी हमें व्यवहारिक ज्ञान जो है वो मिलता है। रिश्तेदार 10 बैठे हैं या 5 परिवार में सदस्य हैं, 5ों बैठे हैं, 5ों के हाथ में मोबाइल है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों की वैल्यू जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वो बात कर रहे हैं हैदराबाद में बैठे किसी दोस्त से, या फिर अमेरिका में, या फिर कहीं पे भी हम समझ लें किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हमारा दोस्त या रिश्तेदार बैठा है, हम उससे बात कर रहे हैं, उसके नज़दीक हैं एक तरीके से, उसकी हर चीज़ हमें पता है कि वहाँ पर क्या होता है विदेश में, या हम अपनी

सारी जानकारी उनको देते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार हमारे आसपास हैं या हमारे घर आते हैं तो उनसे हम बात नहीं करते, या फिर हम अपने रिश्तेदारों के पास, जो जिनके पास हम जा सकते हैं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है, एक घंटे का या एक दिन का या दो दिन का, हम वो समय नहीं निकाल पाते। लेकिन हम दूर दराज बैठे रिश्तेदारों से बात करते हैं, दोस्तों से बहुत दिनों बाद। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही सोशल मीडिया का ज़माना आया, हम अपने पुराने पुराने जो बचपन के दोस्त थे उनको खोज खोज कर हमने ग्रुप बना लिए, हम उन पे बातें करते हैं, या छुट्टियों में कई बार ऐसा होता है कि मिल भी लेते हैं। लेकिन उससे क्या, जो हमारे पास हमने जो अब दोस्त बनाए हैं, जो नए दोस्त हैं जिनके साथ रहकर हम उनकी मुश्किलें या हमारी मुश्किलें दूर कर सकते हैं, उनको तो हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, या फिर उनसे दूरियां इतनी बढ़ा ली हैं सिर्फ किस लिए कि हम फ़ोन के माध्यम से ही अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो पास में जो हमारे दोस्त हैं आसपास, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। या फिर रिश्तेदार की बात करें, भाई बहन की बात करें, भाई बहन बैठे बैठे दूसरों से बात कर रहे हैं लेकिन घर में बैठकर अपने माता पिता या एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से विचार साझा नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी अच्छी ये चीज़ है कि हम बहुत दिनों से या बहुत सालों से जिनसे नहीं मिले हैं, या फिर बहुत ऐसी जानकारी है जिनके बारे में हम नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, वो जानकारियाँ हमें मिलती हैं। लेकिन जो जानकारी हमें अपनी नानी दादी माता से मिल सकती है, उन जानकारियों से हम अनभिज्ञ हैं, व्यवहारिक ज्ञान से हम अनभिज्ञ हैं, जो हम ले सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत सीख सकते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में अगर हमें सक्सेस होना है, सफल होना है, तो हमें अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता या भाई बहन दोस्त या आस पड़ोस में जो भी लोग हैं जिनको थोड़ा हम कह सकते हैं या उनकी सुन सकते हैं, तो उनके पास अगर हम बैठते हैं तो हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। हमें AI को छोड़ना नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों को भूलना नहीं है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: बहनों, मौसम गर्मी का है और गर्मी के मौसम में हमें यही लगता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ठंडा पेय पदार्थ ही पिया जाए, क्योंकि खाने का मन करता नहीं है और शरीर में पानी की कमी जो है वो हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हमें धूप में भी निकलना पड़ता है, तो शरीर की मांग भी वही होती है जो मौसम हो, जैसा कि मौसम होता है। तो बहुत गर्मी पे हमारे शरीर की मांग भी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तरल पदार्थ, पेय पदार्थ जो है वो पिए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ आपको जो गर्मियों में आती हैं। हमारी कैरी होती है, नींबू है, मौसमी है, अनानास है और

और आंवला है, ठंडाई है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम गर्मी में पी सकते हैं। पुदीना है, जलजीरा है, लेकिन सबसे पहले ये सुन लेते हैं गीत, और उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपने बनाई भी हैं, पी भी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज अगर हम कर देते हैं तो वो स्वाद में बहुत ही बेहतर हो जाती हैं।

बहनों, गाने से पहले मैंने आपको बहुत सारे नाम गिनाए थे पेय पदार्थ के, जो कि हम आमतौर पर घर पर बनाते रहते हैं। उसमें से ही एक बता दूं मैं आपको, पुदीना जलजीरा है, और एक खीरे का जो जूस है या रस है उसको भी हम बना सकते हैं। नींबू की शिकंजी बनाते हैं, उसमें हम थोड़ा मसाला और सोडा डालकर उसको थोड़ा नए टेस्ट के साथ भी सर्व कर सकते हैं या घर में भी पी सकते हैं। हमारे अगर कई बार बदहजमी हो जाती है या फिर बच्चों का कई बार पीने का मन नहीं करता है कि एक ही एक चीज़ पीकर बच्चे बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बना लेते हैं। तो पुदीना जलजीरा के लिए पुदीना की पत्तियां ले लें, धनिया पत्ती या नींबू, और थोड़ी सी हींग है, काली मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर है, ये सब ले लें। जो चीज़ें हम लेते हैं आमतौर पर वही सारी चीज़ें हम ले लें, और जीरा के साथ में हमें पुदीना भी लेना है, तो एक मिक्स टेस्ट जो है वो बन जाता है और एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। और साथ ही जैसे केसर लस्सी, भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे पेय पदार्थ के साथ में हम लस्सी तो पीते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर अगर चेंज कर दिया जाए तो हम उसको एक नए स्वाद के साथ भी ले सकते हैं। हम ड्राई फ्रूट भी अगर डाल सकते हैं उसके अंदर, और 10-12 अगर केसर हम पानी में थोड़ी देर भिगो कर रख दें तो उसका कलर और उसके जो रेशे आते हैं लस्सी के अंदर वो स्वाद भी बढ़ाते हैं और ठंडक भी प्रदान करते हैं। एक हम बात कर सकते हैं खीरा, खीरा के अंदर हम 80% या 85% जो होता है उसमें पानी होता है, तो उसका भी रस निकाल सकते हैं। उसके अंदर हम पुदीना, नींबू और सोडा डालकर अगर हम उसको पिएं तो शरीर में पानी की अगर कमी होती है वो तो दूर होती ही है, साथ में अगर नींबू अगर हम डालते हैं और पुदीना डालते हैं तो हाजमा जो है वो भी अच्छा हो जाता है। हर चीज़ में बहनों हम काला नमक, नींबू

0: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से पहले मिड डे न्यूज, फिर 2:15 पर दोपहर समाचार रिले करेंगे।

0: कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: ডক্টৰ শর্মাৰ সৈতে চাৰি বিধায়কে মন্ত্ৰী পদ কি শপত লি।

0: इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @yirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: चोरी चोरी चुपके चुपके, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने। लता मंगेशकर और मन्ना डे को सुनिए, फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: शैलेंद्र के बोलों को अभी आप सुन रहे थे शंकर जयकिशन की धुन पर। आवाजें थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की, और ये फिल्म थी चोरी चोरी। आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को। फिल्म का नाम है दहक।
2: जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब

द हैक फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जिसमें आप सुन रहे थे तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। 3 बजे हैं इस समय, हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4:58 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की ये सायंकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है कार्यक्रम युववाणी के साथ।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM, जहां हम लेकर आए हैं आपका यूथ स्पेशल प्रोग्राम युवानी, जहां आज आप सुन रहे हैं आपके आज दोस्त भावना को।

जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। हर शाम हम 5 बजे आपसे मिलने आते हैं, आपका कार्यक्रम यूथ स्पेशल कार्यक्रम युववाणी लेकर, जहां बातें होती है आपके करियर की, आपके स्वास्थ्य की और आपके आने वाले कल की, साथ ही साथ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें जानकर आज का युवा जो है वो अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपनी ज़िंदगी को स्ट्रांग बनाए, साथ

ही साथ अपने और अपने देश की उन्नति के लिए कुछ काम करें। उसी कड़ी में श्रोताओं, हर बार जैसा कि कुछ नया लेकर आते हैं, वैसे ही आज भी हम आपके लिए कुछ नया लेकर जो है वो आ गए हैं और 100.7 FM के जरिए आपके साथ जो है वो जुड़ गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज है मंगलवार और मंगलवार को हमारा खास सेगमेंट होता है आपका कल, एक ऐसा रेडियो प्रोग्राम जो डेडिकेट होता है आपके आने वाले कल को, यानी कि जहां बातें होती है आपके करियर की, आपके सेफ फ्यूचर की और उन चीज़ों के बारे में जिन्हें कर कर आप अपने आने वाले कल में एक बेहतर इंसान जो है वो बन पाए, अपने करियर को जो है वो स्ट्रांग बना पाए, अपने आप को जो है वो सेफ और सिक्योर बना पाए। इस आपके कल सेगमेंट में हम बातें करते हैं नई नई वैकेंसीज के बारे में, उन करियर ऑप्शंस के बारे में, साथ ही साथ नए फील्ड्स के बारे में और उन कुछ स्किल्स के बारे में जिन्हें अपनाकर आज का युवा जो है अपने आप को स्किल्ड कह सकता है। तो बस दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपका स्पेशल कार्यक्रम आपका कल। दोस्तों, कल का मतलब सिर्फ बीता हुआ दिन नहीं, बल्कि कल का मतलब है हमारा आने वाला समय। हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं आपके करियर की, आपकी स्थिरता की और उस सेफ फ्यूचर की जिसकी चिंता आज हर एक यूथ को होती है। वैकेंसीज तो आती जाती रहती है, लेकिन क्या हम उस स्किल के लिए तैयार है जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे फील्ड की बात करने वाले हैं जिसके बिना आज की दुनिया में एक सुई बेचना भी जो है वो शायद नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फील्ड की, वो है डिजिटल मार्केटिंग की। तो अगर आप भी घर बैठे या फिर किसी बड़ी कंपनी में अपना जलवा बिखेरना चाहते हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज आपके कल में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में आज का युवा जो है वो अपना करियर बना सकता है। दोस्तों, अक्सर सुनते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कर लो, बहुत स्कोप है इसके अंदर, पर ये क्या है? क्या वाकई में ये सच है? अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो पहले लोग लाउडस्पीकर पर चिल्लाकर या फिर अखबारों में विज्ञापन देकर चीजें बेचा करते थे। आज वही काम फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए जो है वो किया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो किया जा रहा है। आज हर कंपनी, चाहे वो एक छोटी सी स्टार्टअप हो या फिर रिलायंस जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, सबको ऐसे लोग चाहिए जो उनके प्रोडक्ट को आपकी मोबाइल स्क्रीन तक जो है वो पहुंचा सके। और उनको जानकर सबसे अच्छी बात यह है कि वो उनके दिमाग तक जो है वो अप्रोच कर पाए, उनके दिमाग तक पहुंच पाए और उन्हीं जो है वो उस चीज की वैल्यू जो है वो समझ में आ पाए। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में करियर के बारे में हम जो है वो बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या काम करना होगा, तो अब उसके बारे में बात करें तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर छिपी जो भी चीजें हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक काम नहीं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, केवल एक ही काम आपको जो है वो इसके अंदर नहीं करना होता। जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर, अगर आप दिन भर रील्स देखते हैं, दिन भर जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है वो जुड़े रहते हैं, तो क्यों ना इसे दूसरों के लिए मैनेज किया जाए। ब्रांड्स को एक ऐसे लोग चाहिए जो उनके सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो बना सके, साथ ही साथ इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट का भी जो है वो ऑप्शन होता है। अगर जैसे कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी सर्च करते हैं तो पहले लिंक किसकी आएगी, ये जो तय करता है SEO एक्सपर्ट, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें बहुत पावर भी होता है, बहुत अच्छा खासा पैसा भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएटर, यानी कि कॉपीराइट, तो अगर आपकी बातों में जादू है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, तो एड्स की दुनिया आपका इंतजार जो है वो कर रही है। साथ ही साथ इसमें अगर हम और बातें करें तो डेटा एनालिस्ट की जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो पसंद की जाने वाली इसके अंदर फील्ड है, जिसके अंदर कौन सी जो चीजें हैं वो कितनी बार चलेगी, कितने लोगों ने देखा, ये सब एक डेटा का खेल होता है। इसके जरिए भी आप जो है इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे मन में जो हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तब एक सवाल अक्सर आता है कि हम युवा जो होते हैं वो अपनी भर्ती एज के साथ, निकलते वक्त के साथ, थोड़ा सा जो है वो
तनावग्रस्त या यूं कहें कि थोड़ा सा जो है वो बेचैन रहते हैं।

हैं कि क्या मेरा फ्यूचर जो है वो सुरक्षित है। आज के समय में हर साल जो है वो डिजिटल विज्ञापनों पर अराउंड हर एक कंपनी अपना 20-30% जो है वो एक्सपेंसेस बढ़ा रही है। इसका मतलब क्या है, वैकेंसी कभी कम नहीं होने वाली। हर शहर, हर छोटे बिजनेस को आज एक डिजिटल मार्केटर की जो है वो जरूरत है। अब अगर हम इसमें, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारा भविष्य क्या सुरक्षित है, इसके अंदर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां आप रिमोट वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, अपनी खुद की एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप खुद के बॉस जो है वो बन सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या काम होते हैं, ये आज के समय में क्या वाकई में एक सेफ जॉब जिसे हम कहते हैं, सेफ करियर ऑप्शन जिसे हम कहते हैं वो है, हमने देखा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसकी शुरुआत जो हम कैसे करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज है, जैसे कि सर्टिफिकेशन। किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसका जो है वो कोर्स कर सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं। ज्यादा पैसे ना लगकर इसमें 3 महीने किसी अच्छी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। वहां जो भी सीखेंगे वो कोई किताब नहीं सिखाएगी, बल्कि आपका असली स्किल होगा वो। इसके अलावा आप खुद का एक ब्लॉग या फिर एक पेज बना सकते हैं। जब आप इंटरव्यू में अपना काम दिखाएंगे तो आप ये समझो कि वो वाला जो आपने जो ब्लॉग या फिर जो पेज बनाया है वो आपकी क्वालिटी को, आपके एक्सपीरियंस को जो है वो शो करेगी। दोस्तों आज की अगर हम बात करें, इसके हमने जाना कि हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो बहुत छोटे छोटे स्टेप है जिनके जरिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। दुनिया हम आज के समय में देखें तो डे बाय डे जो है वो बदलती जा रही है। तो अगर आप भी वही पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं तो शायद आप थोड़ा सा जो है वो पीछे छूट जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक करियर नहीं, एक लाइफस्टाइल है। ये आपको आजादी देता है सोचने की, क्रिएटिव कुछ करने की और अपने भविष्य को अपने हाथों से लिखने की। दोस्तों बस आपसे इतना ही कहेंगी कि किस्मत के भरोसे मत बैठें, स्किल के भरोसे बैठें, क्योंकि किस्मत बदल सकती है पर आपकी मेहनत और आपका हुनर हमेशा जो है वो आपका बना रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग में कैसे अपना जो है वो करियर बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

जी स्वागत है दोस्तों आप सभी का। कार्यक्रम चल रहा है युवानी और खास सेगमेंट है आपका कल, जहां ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रही थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि किस तरीके से आज का युवा इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है, क्या आज के समय में ये एक अच्छा सेफ करियर ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का दायरा इतना बड़ा है कि इसे हम और जितना भी गहराई से समझें तो हम इसके बारे में और बहुत कुछ फ़ायदेमंद जो है वो जान पाएंगे। पिछले सेगमेंट में हमने खूब सारी बातें इसके बारे में की कि कैसे हम जो है वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अब अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि आप अगर किसी भी शहर में बैठे हों, चाहे जयपुर हो, लखनऊ हो, किसी भी छोटी सी गली में बैठकर आप अमेरिका की किसी भी क्लाइंट के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। पहले के समय में व्यापार का मतलब होता था दुकान कहाँ है, लेकिन आज के समय में व्यापार का मतलब है कि आप जो है वो सर्च इंजन पर, गूगल पर जो है वो कहाँ है। अगर आप अपने शहर के छोटे कारीगरों या फिर दुकानदारों को ऑनलाइन ले जाना सिखा पाते हैं तो आप न सिर्फ अपना करियर बना पाएंगे बल्कि अपने शहर की इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसके साथ साथ उसे बदल पाएंगे। दोस्तों हम जो है वो आपके कल की बातें कर रहे हैं, यानी कि आपके फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, और जब फ्यूचर की जहां बात होती है वहां एआई का जिक्र ना हो शायद ये तो पॉसिबल ही नहीं है आज के समय में। कई बार लोग डरते हैं कि एआई के ज़रिए डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी जो है वो चली जा सकती है या फिर छीनी जा सकती है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझें और इसके बारे में बात करें, इसे देखें, तो सच जो है वो इसके उलट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उन लोगों की नौकरी छीनेगा जो अपडेटेड नहीं है, यानी कि जो मार्केटर टूल्स का इस्तेमाल करके बेहतर एड्स और कंटेंट बनाना सीख जाएंगे उनकी डिमांड जो है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको बस तकनीकी से डरना नहीं है, उसे अपना असिस्टेंट बनाना है। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए हम चीज़ों को जो है वो बेचना सीखते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हम मार्केटिंग जो है वो स्किल जानते हैं। इसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो एक और हमारा जो है वो अच्छा एस्पेक्ट जो है वो हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, अगर हमें खुद को एक ब्रांड बनाना है तो चाहे हम एक चाहे सिंगर हो, पेंटर हो, सेफ हो, कुछ भी हो, हम अपनी स्किल को हम दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं ये एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हमें सिखाता है। याद रखिए दोस्तों आज के दौर में जो दिखता है वही बिकता है, तो बस आपको इस डिजिटल मार्केट में अपने आप को जो है वो प्रूव करने के लिए इसके अंदर खुद को जो है वो रखना होगा सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी बात की कि बिना पैसे की जो है वो शुरुआत यानी कि करियर की स्थिरता या फिर इसमें स्टेबिलिटी कितनी

है इस फील्ड में आने के लिए। तो कोई बहुत बड़ी भारी डिग्री की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, डाटा कनेक्शन होना चाहिए और सीखने की सबसे बड़ी चीज़ ललक होनी चाहिए। जो आप आज इस वक्त से अगर शुरू करते हैं तो आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज जो है अवेलेबल है जिनके ज़रिए बस आपको एक दरवाज़ा खटखटाने की जो है वो हिम्मत चाहिए, और जब आप उस दरवाजे को खटखटाते हैं तो आप बहुत कुछ जो है वो इससे सीख सकते हैं। दोस्तों चाहे फील्ड कोई भी हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो या फिर कोई और फील्ड, हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो सीखने की ललक जो है वो आप में होनी चाहिए। बहुत सी फील्ड में बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत सारी जो है वो योग्यताएं चाहिए होती है, लेकिन हर एक फील्ड की कॉमन बात यही है कि आप में सीखने की जो है वो ललक होनी चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ को मन से सीखते हैं तब आप उसमें बहुत बेहतर तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो प्रूव कर पाते हैं, अपना करियर उसमें अच्छा बना पाते हैं। तो बस अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के, बिना किसी फ्यूचर टेंशन के आप इस फील्ड को जो है वो जान सकते हैं और इसमें अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों आपके कल कार्यक्रम में और भी बहुत सारी बातें आपके साथ जारी है, लेकिन उससे पहले आपके मनोरंजन का ध्यान रखते हुए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360977।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम चल रहा है युवानी, और जहां हम बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, खूब सारी हमने बातें की और उसमें किस तरीके से हम हमारे करियर को जो है वो एक अच्छी दिशा जो है वो दे सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। दोस्तों आज अब हम जो है वो बात करने वाले हैं वो उससे एक कदम आगे की बातें हैं। आज के दौर में अगर हम देखें तो स्पेशलाइजेशन का जो दौर है, जिसे कहे तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, वो है मल्टीटास्किंग और मल्टी स्किल्ड। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि सब काम जानने वाला किसी में माहिर नहीं होता, और आज के दौर में अगर हम बात करें तो इस कहावत को चुनौती देने के लिए एक कुछ बातें हैं कि आज की हकीकत जो है वो इससे अलग है। आज की दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ काम ना जानते हो बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हर एक मोर्चे पर जो है वो खड़े हो सकते हैं। यानी कि आज के समय में सब कुछ जानने वाला जो है वो अच्छा ट्रेडर कहलाता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि सिर्फ एक डिग्री काफ़ी है या फिर कुछ और सीखना पड़ेगा, तो आपको कुछ अगले मिनटों में पता चल जाएगा हमें सुनकर कि किस तरीके से एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन जो है वो आज के समय की जो है वो डिमांड बन गया है। दोस्तों आसान शब्दों में अगर कहें तो मल्टी स्किल्ड होने का मतलब यह नहीं कि आप एक साथ 10 डिग्रियां ले लें।

इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो स्किल है, आपकी जो मेन जो स्किल है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी सीखे जो आपके काम को जो है वो सपोर्ट करती हो, आपको इन्हेंस जो है वो करती हो। अगर हम एग्जांपल के तौर पर कहें कि बताएं आपको कि एक आप अकाउंटेंट है जैसे, बहुत अच्छी अकाउंटिंग आती है, लेकिन क्या होगा अगर उसे थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइन भी अगर आपको आ जाए, थोड़ा सा आपको डाटा प्रेजेंटेशन भी आ जाए, उससे आपकी वैल्यू आपकी कंपनी में बाकी अकाउंटेंट से 10 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती है। आज की जो कंपनियां हैं वो ऑलराउंडर खिलाड़ियों को पसंद करती हैं। जैसे क्रिकेट में हम उस प्लेयर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं और फील्डिंग में तो जैसे बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। करियर का मैदान भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। इसका भी सेम यही रूल होता है कि जहाँ आप बेस्ट अपना देते हैं वो तो आपका मेन स्किल होता ही है, उसके अलावा आपको साइड की बाकी चीज़ें भी जो है वो आनी चाहिए, और आज के समय की ये सबसे बड़ी जो है वो ज़रूरत है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप मल्टी टैलेंटेड बने, आप मल्टी टास्किंग बने। दोस्तों आज के समय में हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें, क्यों ये ज़रूरी होता है, और खासकर युवाओं की सेगमेंट में अगर हम ये बात करें कि खासकर युवाओं के लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, उसमें बहुत सारे रीजंस जो है वो इसको जो है वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण आज के समय में युवाओं के लिए मल्टी टास्किंग या फिर मल्टी टैलेंटेड होना क्यों ज़रूरी है। सवाल आता है कि जॉब सिक्योरिटी हम सबको चाहिए। हम जानते हैं कि दुनिया अनिश्चित है, अगर हम सिर्फ एक काम जानते हैं तो कल को वो काम मशीन या फिर जैसे कि हम हर जगह सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी जॉब ले जाएगी, अगर माना कि हमने वो काम एआई करने लग गया तो खतरे में कौन पड़ा, हम? आपकी वो जॉब जो है वो खतरे में आ जाएगी। लेकिन अगर वहीं आप मल्टी स्किल्ड हुए तो आप तुरंत खुद को दूसरे फील्ड के अंदर या दूसरे काम में जो है वो डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और फ़ायदा है, वो है बेहतर सैलरी। जैसे जब आप एक इंसान का काम करते हैं तब आपको एक पर्टिकुलर सैलरी जो है वो दी जाती है, लेकिन वहीं अगर आप 3 लोगों की समझ रखते हैं, बहुत सारी स्किल्स रखते हैं, तो आपकी सैलरी पैकेज में भी वैसे ही जो है वो वेटेज बढ़ेगा जिस तरीके से आपके नॉलेज में वेटेज बढ़ा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए कि अगर ऑफिस जॉब की बात करें तो 9 to 5 की जो ये जॉब है इसे हम एक तरह की कैद भी कह सकते हैं। इससे अगर आप कोई भी यूथ अगर बाहर निकलना चाहता है तो आप अगर मल्टी स्किल्ड है तो आप घर बैठे अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो एक साथ हैंडल कर सकते हैं। सोचिए कि आप एक वीडियो एडिटर हैं जिसे स्क्रिप्ट लिखना भी आता है, थोड़ी सी आपकी वॉइस भी अच्छी है तो थोड़ा बहुत आप वॉइस ओवर भी कर लेते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपने आप में एक पूरी कंपनी बनाने की जो है वो कैपेबिलिटी आप में है, तो क्यों ना आप भी अपने आप को इस फील्ड में या फिर इस तरीके से अपने आप को डिज़ाइन करें, अपने आप को इस तरीके से डालें कि आप जो है वो अपने आप को बहुत सारे कामों का, बहुत सारी स्किल्स का जो है वो कॉम्बो बना पाएं। क्योंकि कॉम्बो का मतलब दोस्तों यही है कि आज के समय में एक काम करने से आपका जो है वो काम नहीं चल सकता, या रियलिटी अगर हम कहें तो शायद आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। अगर आपको अपने सपनों को जीना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, आपको मल्टी स्किल्ड होना ही पड़ेगा, और यही हमारे आज के समय की जो है वो सच्चाई है और ज़रूरत भी है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: श्रोताओ, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपके कल सेगमेंट में कि आज की जरूरत जो बन गया है वो है मल्टी स्किल्ड पर्सन जो है वो होना। दोस्तों हमने जैसे बहुत सारी बातें की ब्रेक पे जाने से पहले कि क्यों ये आज के समय की जरूरत है, मल्टी स्किल्ड या फिर मल्टी टैलेंटेड होना क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी स्किल्स है जिन्हें हाल में हम जो है वो साथ जोड़ सकते हैं। कॉम्बो स्किल जिसे हम कहते हैं वो, जैसे कि मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हैं तो आपको थोड़ी बहुत डिजाइनिंग जो है वो आनी चाहिए या फिर आपको सीख लेनी चाहिए। अपनी बात को विजुअली कहना सीखिए जिससे कि आप एक अच्छे प्रेजेंटर जो है वो बन पाए। अगर आपको कोडिंग आती है तो आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। अगर आप कई टेक एक्सपर्ट में बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन अपनी बात को समझा नहीं पाते, तो अगर आप कोडर है तो अपने पब्लिक स्पीकिंग या फिर अपने प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हैं जिससे आप अपनी टीम का लीडर भी बन पाएंगे। सेल्स, अगर आपको बेचना आता है, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी स्किल अच्छी है सेल्स में, तो आपको लोगों के दिमाग को पढ़ना आना चाहिए। ये एक अलग स्किल होती है, इसे हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। सेल्स के साथ ह्यूमन बिहेवियर को समझना भी आज के समय की एक ज़रूरत बन गई है जिससे आप बेहतर जो है वो सेल कर पाएंगे। अगर आप एक टीचर है तो आप ऑनलाइन टूल्स और वीडियोस की जो है वो एडिटिंग सीख सकते हैं। आप सिर्फ एक क्लास के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टीचर बन सकते हैं। और आज के समय में अगर हम कहीं पढ़ाई जो है वो सबसे ज़्यादा केवल ऑफलाइन मोड से ना होकर ऑनलाइन मोड तक पहुँच चुकी है तो शायद गलत नहीं होगा। तो बस आपको एडिटिंग के साथ साथ आप पूरी दुनिया के जो है वो टीचर बन सकते हैं। बात आती है कि दोस्तों आप शुरुआत कैसे करें, कि हम सीधा ही बहुत ही मल्टी स्किल्ड पर्सन तो एक साथ बन नहीं सकते। धीरे धीरे हमें सब कुछ सीखना ज़रूरी होता है। तो हम कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, कहाँ से टाइम मैनेज करें, तो सबसे बस ज़रूरत यहाँ पर एक चीज़ की होती है, वो होती है टाइम। आपको हर एक चीज़ के लिए टाइम देना होता है, टाइम निकालना पड़ता है। चाहे थोड़ी सी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप दिन में 1 घंटा ले लें,

आपको इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर दूसरों की लाइफ देखने की बजाय आप हाउ टू जो है वो जो भी अगर आप सीखना चाहते हैं उसे सर्च कर सकते हैं, उस स्किल को देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जितना हमारे लिए आज के समय में खतरा जो है वो साबित हो रहा है, उतना ही उसका पॉजिटिव अगर हम यूज़ लें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथी के साथ आप बैठ सकते हैं, आप देखें कि वो क्या काम करते हैं, उन्हें देखकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखने और ऑब्जर्व करने से, उनके साथ बैठने से भी आप कुछ बेसिक चीज़ें जो वो सीख सकते हैं। इसके अलावा आप हर महीने एक छोटा सा कोर्स, जैसे कि बहुत सारी कंटेंट राइटिंग के कोर्स होते हैं, कोई नया लैंग्वेज सीखने वाला कोर्स होता है, कोई एक्सेल, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज हुई, कुछ भी, आपको एक टारगेट बनाना है कि मुझे हर महीने एक नया कोर्स जो है वो सीखना है। बस शुरुआत आपको छोटे से लेवल पर करनी है। किसी भी तरीके से आप इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे देखिए कि आप जो है अपने मेन स्किल्स के अलावा, अपने मेन जो आपका गोल है उसके साथ साथ आप बहुत कुछ नया जो है वो सीखने लग जाएंगे। बस दोस्तों, आपसे कहना हम यही चाहते हैं, आपका कल ये जो स्पेशल सेगमेंट है उसमें इतना कहना चाहेंगे कि आने वाला भविष्य उन्हीं का होता है जो लचीले होते हैं, यानी कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो ये नहीं कहते कि ये मेरा काम नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि मैं इससे भी सीख सकता हूँ। बस ज़रूरत है आपको अपनी चीज़ों को आगे की ओर जो है वो फैलाने की। दोस्तों, आप जब अपनी जड़ों को मजबूत रखते हैं तो आप जो है वो हर दिशा में अच्छे से काम कर सकते हैं। एक हुनर आपको रोटी दे सकता है, लेकिन मल्टी स्किल्ड जो पर्सन है, अगर आप वो बन जाते हैं तो आपको पूरी दुनिया की जो है वो सैर जो है वो आप कर सकते हैं। आपके भविष्य को आप स्थिर कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा अक्सर मोटो यही होता है कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें बताएं जिनके ज़रिए आप जो है ना केवल अपने आप को जो है वो प्रेजेंट कर पाएं दुनिया के सामने, बल्कि अपने आने वाले कल में, अपने फ्यूचर में अपने आप को जो है वो सिक्योर कर पाएं और एक अच्छा इंसान के रूप में आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं।

जी दोस्तों, घड़ी की सुइयां जो है वो इशारा कर रही है अब आपसे विदा लेने का वक्त जो है हो गया है। आज हमारा ये कार्यक्रम आपका कलमी, हमने बहुत ही यादगार जो सफ़र जो है वो आपके साथ तय किया है। हमने जाना कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए हम पूरी दुनिया के मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो छा सकते हैं। हमने बात की कि आज का दौर सिर्फ एक डिग्री का नहीं बल्कि मल्टी स्किल्ड होने का है, एक ऐसा ऑलराउंडर बनने का जो हर एक चुनौती के लिए तैयार रहे, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान बनने का जो अपने आप को ना केवल एक निश्चित दायरे तक सीमित रखे बल्कि आज के समय की जो ज़रूरत है उसे हर एक फील्ड में अपने आप को जो है वो प्रूव करने की, जिससे वो ना केवल अपने सपनों को नॉर्मली जी पाए बल्कि अपने सपनों को बेहतरीन तरीके से जो है वो पूरा कर पाए। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि इन सब सपनों की नींव है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। याद रखिए, तकनीकी से डरना नहीं है, उससे अपना दोस्त बनाना है। चाहे वो एक्सेल की सीट हो या फिर ईमेल लिखने का सलीका, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आने वाले कल को और स्थिर और सुरक्षित बनाती हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये बातें आपकी करियर की राह में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेगी, आपको बहुत सारी हेल्प करेगी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको खुद पर भरोसा रखना है और हर दिन कुछ नया सीखने की जिद जो है वो पालनी है। कल फिर मिलेंगे, हर रोज़ शाम को आपसे 5 बजे मिलने आते हैं इसी वक्त इसी स्टेशन के ज़रिए। कुछ और नई वैकेंसीज, कुछ नए करियर ऑप्शन और हर एक

दिन एक नए सेगमेंट के जरिए। तो दोस्तों बस अब विदा लेते हैं आपसे, कार्यक्रम से जाने की इजाजत दें आपकी आरजे दोस्त भावना को। आप सभी को मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 5:55 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण में इस सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। दिल्ली केंद्र से रिले अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा शाम 6:05।

फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर। 6:20 पर समय रहेगा दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचारों के लिए। जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। 6:40 पर समय रहेगा जयपुर केंद्र से रिले जिले की चिट्ठी का।

राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। 7 बजे कार्यक्रम होगा किसान वाणी।

राजस्थानी लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:30 पर। आठ बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी @90 साल कुमार अजय से अमित कुमार की भेंट वार्ता।

फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकेंगे 8:30 पर। माफ कीजिएगा, ये कार्यक्रम फरमाइशी नहीं है, फिल्म संगीत का गुलदस्ता ये कार्यक्रम है, आप सुन सकेंगे 8:30 पर। 8:45 पर आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। दिल्ली केंद्र से रिले न्यूज एट 9 आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे। 9:15 पर कार्यक्रम होगा मन भावन। जी हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे सुगम संगीत, लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे रात्रि 11 बजे। 11:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कार्यक्रम विवरण में अभी हमने जाना आज के शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी के विषय में। FM 102.7 MHz पर आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। शाम के 6 बजने को है और

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी

0: चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है। यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है, इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 102.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्म गीत। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: खेलते हैं बेसबर अपने लहू से होलियां।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटंस अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते संदेशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थं एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
3: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु आनुगत्य पोषण करिम।
2: डॉक्टर शर्मा महोदयेन सह अन्ये चत्वारः अपि मंत्रिमंडलः मंत्रित्वेन शपथं स्वीकृतवन्तः। तेषु भाजपा दलस्य पक्षतः रामेश्वर तेली अजंता नियोग च असम गण परिषदः पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉ शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत् यः अनवरतं द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदम् अलंकृतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सहभागी राष्ट्राणां च विदेश मंत्रिणः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। सः अपि उक्तवान् यत् ते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह अपि मेलनं करिष्यति। श्री जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां विदेशमन्त्रिणः परस्पर हितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु स्वविचाराणां आदान प्रदानं करिष्यन्ति।
4: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पास ले जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
2: अद्य अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसः आचर्यते। अयं दिवसः आधुनिक परिचारिका व्यवस्थायाः संस्थापिकायाः फ्लोरेंस नाइटिंगल इत्यस्याः जन्मवार्षिक्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षम् आचर्यते। रोगी परिचर्यायां सामुदायिक स्वास्थ्ये आर्थिक विकासे च परिचारिकाणां महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृत्य अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसस्य विषयः अस्माकं परिचारिकाः अस्माकं भविष्यम् इति। सशक्ताः परिचारिकाः जीवनानि रक्षन्ति इति उपविषयः अपि निर्धारितः अस्ति। एतत् वैश्विकस्तरे परिचर्या व्यवसायिकानां कृते उत्तमसहयोगस्य संरक्षणस्य संसाधनानां च आवश्यकतां प्रकाशयति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते कार्यक्रमे पञ्चदशभ्यः परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन निर्वाचित मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः नेतृत्वे प्रथम मन्त्रिमण्डल गोष्ठ्याः निर्णयानां भूरि प्रशंसां कृतवान्। सामाजिक माध्यमेन प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् पश्चिम बंगाल राज्यस्य जनानां कल्याणमेव सर्वोपरि प्राथमिकता वर्तते। श्रीमोदी हर्षं प्रकटितवान् यत् अधुना राज्यस्य नागरिकाः विश्वस्य बृहत्तम स्वास्थ्य योजनायाः आयुष्मान भारत इत्यस्य लाभं प्राप्तुं शक्ष्यन्ति, या उच्चस्तरीय सुलभ चिकित्सा संविध्य सुनिश्चितोति। प्रधानमन्त्री सबलं प्रोक्तवान् यत् एषः द्विचक्रीय सर्वकारः राज्ये प्रमुखः केन्द्रीय योजनानां निर्बाध वितरणं सुदृढीकरिष्यन्ति। उल्लेखनीयं वर्तते यत् ह्यः जातायां प्रथममन्त्रिमण्डलगोष्ठ्यां बांग्लादेश स्मीनः कण्टकतारवेष्टनार्थं पञ्चचत्वारिंशत् दिनाभ्यन्तरे सीमासुरक्षाबलाय भू हस्तान्तरणस्य ऐतिहासिक निर्णयः अपि स्वीकृतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे इटली पञ्चदेशानां यात्रायां भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितानां क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। गुजरात राज्ये जनगणनायाः प्रथमः चरणः जून मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् आरभ्यते। जून गुजरातस्य गांधीनगरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् जनगणना परिचालन निर्देशकः सुजल जे मायात्रा इत्येषः अवदत् यत् राज्ये जनगणना परिचालन निदेशालय जनगणना 27-2000 वर्षस्य कृते सज्जतां करोति। प्रथमवारं भारतसर्वकारेण आरब्धस्य सर्व स्वयं गणना पोर्टल इत्यस्य माध्यमेन जनगणनायां भागं ग्रहीतुं नागरिकेभ्यः अवसराः प्रदीयन्ते। मई मासस्य 17 दिनाङ्कात् 31 दिनाङ्कपर्यन्तं जनाः अस्मिन् पोर्टले स्वीयां स्वयं गणनां पूरयितुं शक्नुवन्ति। अस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं नागरिकाः स्वेच्छया स्वगृहाणाम् उपलब्धसैविध्यानां सम्पत्तीनाम् अन्यविवरणानां च सूचनाः सरलतया सुरक्षितरूपेण सरलरीत्या च आन्लैन् इति आभासीयमाध्यमेन पूरयितुं शक्नुवन्ति। क्रिकेट प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र बदले नहीं जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। आज नई दिल्ली में एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कहां चूक हुई इसका पता लगाने के लिए सीबीआई को जांच दी गई है।
2: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करें।
1: एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा इस साल 20 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में केवल वही 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए 16 से 30 मई तक का समय दिया है। इस दौरान उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और पते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए केवाईसी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपडेट करना अनिवार्य है। नीति आयोग ने राजस्थान को एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल बताया है। आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक की समेकित शिक्षा उपलब्ध कराने में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के एकीकृत विद्यालयों में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 35% है। वर्तमान में प्रदेश के 27,889 स्कूल प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही स्थान पर दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को कहा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रावधानों को लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब राजस्थानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है तो स्कूलों में इसकी शैक्षणिक स्वीकार्यता पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि राजस्थानी को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और प्रारंभिक स्तर पर इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। नई दिल्ली स्थित एम्स और अन्य कई केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही कोटा और बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी। ये टीम इन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटरों में संक्रमण के कारणों और सर्जरी की प्रक्रियाओं की गहन जांच करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में चिकित्सा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। श्री बिरला ने प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और सख्त प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को भी कहा जो सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था का सुधार रोडमैप तैयार करेगी। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर लिया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार

0: शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी और हरित ऊर्जा की ओर रुख करने का आग्रह किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से शोध और नवाचारों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री बागड़े आज सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को शिक्षा के श्रेष्ठ मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने को कहा। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र, छात्र संघ कार्यालय और शोधार्थी बालक छात्रावासों का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सलुम्बर जिले के ओड़ा और अदवास सहित कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहां लोक कलाकारों ने गीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं को सरल भाषा में समझाया। बाड़मेर जिले में भी इस अभियान के प्रति आमजन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आम जन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आम जन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: जोधपुर आज अपना 568वां स्थापना दिवस पारंपरिक शौर्य और उल्लास के साथ मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मारवाड़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन करते हुए जोधपुर वासियों को बधाई दी। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इससे पहले मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि राव जोधा ने वर्ष 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और अब मौसम। प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल यहां दिन का पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आज भी जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में 45 डिग्री से ऊपर तापमान मापा गया। सबसे अधिक 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर

0: अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां देखी जा सकती है।
1: इस बीच मौसम का एक और रंग आज देखने को मिला। राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में दोपहर बाद बारिश हुई, इससे लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली। भरतपुर में दोपहर बाद बरसात हुई, वहीं धौलपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू सहित कुछ अन्य जिलों में अंधड़ तथा वर्षा के समाचार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर झुंझुनू में बीडी के अस्पताल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने नर्सिंग स्टाफ की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। बांसवाड़ा जिले में चंदन वन विकसित किया जाएगा। वन विभाग के डीएफओ अभिषेक शर्मा ने बताया कि राज्य के सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में चंदन के पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग की ओर से इसके लिए बजट प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और इसी मानसून सत्र में वृक्षारोपण का काम शुरू हो जाएगा। जिले में ये वन घंटाला स्थित झातलिया खंड में लगाया जाएगा। ये वन 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। मंत्री संजय शर्मा ने बांसवाड़ा पहुंचकर घंटाला क्षेत्र की झातलिया साइट का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सफेद चंदन के पौधे लगाने की योजना है। चंदन के पौधों के साथ ही दूसरे पौधे भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि चंदन अर्ध पराजीवी पौधा होता है। इसके अंकुरण के लिए दूसरे होस्ट प्लांट की जरूरत होती है, जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होस्ट प्लांट के रूप में मूंग, अरहर, हेज, करंज और मेहंदी के पौधे काम में लिए जा सकते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत जिले में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एलईडी वैन के माध्यम से रात्रि चौपाल में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जिले के सज्जनगढ़, पीपलखूट, मोरवानिया, टामटिया, नालचौकी और सागबारी सहित कई स्थानों पर रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को उंबाड़ा गांव में मौके पर ही लाभ दिया गया। इससे पशुपालकों के चेहरे खिल उठे। ग्राम रथ अभियान में कलाकारों के जत्थे प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। जिले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि ये अभियान मिशन मोड पर संचालित हो रहा है। इसके तहत गांव-गांव में जन जागरूकता लाई जा रही है। इससे बालिकाएं समूह में स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर HPV टीका लगवा रही हैं। तलवाड़ा के डॉक्टर अर्जुन ढिंडोर ने बताया कि अभियान में आशा सहयोगिनी और साथिन भी पात्र बालिकाओं और अभिभावकों की समझाइश कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों आबापुरा क्षेत्र के गामदा, झरनिया और चाचा कोटा सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने झरनिया गांव में लंबे समय से बंद पड़ी पनघट योजना को दोबारा चालू करने के निर्देश दिए। वहां नया

0: बोरिंग खुदवाकर पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने को भी कहा। इसी तरह गामदा गांव में भी पनघट योजना के तहत बंद पड़े जल स्रोत शुरू करने के निर्देश दिए गए। जनगणना प्रक्रिया 2027 के तहत इन दिनों जिले में स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। प्रमुख जनगणना अधिकारी ने बताया कि ये प्रणाली नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर देती है। इससे जनगणना को अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। 15 मई तक आम लोगों को स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके तहत जनगणना पोर्टल पर नागरिक स्वयं जानकारी दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का काम करेंगे। इस काम के लिए जिले में 3,413 प्रगणक और 593 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पृथ्वी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही शिक्षा, समानता और समाज सुधार के लिए किए गए उनके प्रेरणादायी कामों को याद किया गया। अंबेडकर जयंती के मौके पर भी जिले में कई कार्यक्रम रखे गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संविधान को जाने विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता हुई। साथ ही विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में ब्लॉक स्तर तक के कार्यालयों को भी शामिल किया गया। यहां श्रमदान कर कार्यालय परिसरों की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, पेपर लीक री शंका विचे नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, मामलारी जांच सीबीआई ने सौंपी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूलां माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो, पश्चिम एशिया में चल रही तनातनी बीच भारत में घरेलू गैस रो उत्पादन बेधर 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदों लागोड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात, बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे समाचार विगतवार। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पेपर लीक वेवन रिशंका माए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दीनी है। एनटीए री ओरों सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बताई जियो के ओ फैसलो विद्यार्थियों रा भला और इम्तिहान माथे भरोसा न ध्यान रखता थका करी जियो है। एनटीए रे मुजब सरकार पेपर लीक रा आरोपान री जाँच सारू मामलो सीबीआई ने सौंपण रो फैसलो किन्नो है। एनटीए परीक्षा री नवी तिथि रो ऐलान बेगोई करेला। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार री जानकारी एर मई 2026 रा परीक्षा केंद्र माए बदलाव नी फैला। एजेंसी रे मुजब परीक्षा ओजू देवन सारू पाछो नाम मनावण और फीस जमा करावण री जरूरत नी फैला। एनटीए रा महानिदेशक अभिषेक सिंह खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि पूरो पेपर लीक नी भयो पर कुछ सवाल लीक भया। वे कहो कि परीक्षा री प्रक्रिया माए चूक री ठा करण सारू सीबीआई ने जांच दीरी जी है।
2: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी। और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेंगे। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे।
1: इन बीच एसआई भर्ती परीक्षा 2021 इन साल 20 सितंबर न ओजूली जावेला। इनमें पहली भी परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला करीब 383,000 उम्मीदवार शामिल फै सकेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग इंसारू अर्जियां माए जरूरी बदलाव बाबत 16-30 मई ताई री मियाद तय कीनी है। उम्मीदवार जरूरी फेवंडरी सूरत माए मोबाइल नंबर ईमेल और पता री जानकारी बदल सकेला। नीति आयोग राजस्थान माए भणाई लिखाई रा मौजूदा हालात री सराहना करता थका एकीकृत शिक्षा रा हलका माए राज्य ने देश माए अव्वल बतायो है। आयोग का न्यू जारी रपट रे मुजब राज्य पहली बारहवीं कक्षा ताई रे समय के शिक्षा मुहैया करावन रे मामला माए देश भर माए अव्वल है। रपट रे मुजब देश री कुल एकीकृत स्कूल माए राजस्थान री हिस्सेदारी करीब 35% है। देश माए पहले 12वीं कक्षा ताई री तालीम देवन वाली हर तीजी स्कूल राज्य माए चाल रही है। फिलहाल प्रदेश की 27,889 स्कूल माए प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी ताई री शिक्षा एक ही ठौर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने प्रदेश की सगली सरकारी और गैर सरकारी स्कूल माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण रे बारा माए नीति बनावन रा हुक्म दीना है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहतारी पीठ कहो कि नवी शिक्षा नीति 2020 रा तहत मायड़ बोली या भाषा आधारित भणाई लिखाई रा प्रावधान लागू करनो राज्य रो संवैधानिक दायित्व है। अदालत कहो कि जद राजस्थानी विश्वविद्यालय माए पढ़ाई जा रही है तो इन ने स्कूल माए पढ़ावण ने स्वीकार करण माथे कोई सवाल ही नहीं वेवणु चाहिए। पीठ राजस्थानी ने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा रा तौर मान्यता देवन रो हुक्म देता थका कहो कि इनने शुरुआती लेवल माथे भणाई लिखाई रा जरिया रा तौर अपनावण रे बारा माए विचार करियो जावणु चाहिए। नई दिल्ली रा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और दूजा कुछ केंद्रीय चिकित्सा संस्थान रा जानकारा री टीम कोटा और बूंदी रा अस्पताल रो दौरो करेला। टीम आ अस्पताल माए ऑपरेशन थिएटर माए लाडला दिनाभ्यास संक्रमण रा कारण और ऑपरेशन री प्रक्रिया रे बारे माए जांच करेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा माए चिकित्सा विभाग रा आला अहलकारा सागे मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। श्री बिरला कोटारा सरकारी अस्पताल माए लाडला दिना जापा वाली कुछ लुगाइया री मौत रा मामला ने घणो गंभीर बताता थका अहलकारा ने आइंदा एड़ा वाकया रोकण सारू करड़ा प्रोटोकॉल बनावन रा हुकम दीना। लोकसभा अध्यक्ष सरकारी अस्पतालां रो दौरो कैरर व्यवस्था माए जरूरी सुधार रो रोड मैप तैयार करण सारू संभागीय आयुक्त री सदारत माए खास समिति बनावन बाबती कहो। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। मध्य पूर्व माए चाल रही तनातनी बीच भारत देश माए रसोई गैस उत्पादन करीब 36,000 टन रोजिनारा लेवल नो बधार 54,000 टन कर दिनो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली माए सालाना व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 माए आ जानकारी दीनी। वह कहो कि कई देशा ने लाडला कुछ महीना माए कीमता माए बढ़ोतरी और ईंधन री कमी रो सामो करनु पड़ियो जदके भारत घरेलू मूल माए थरता राखण माए कामयाब रह्यो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विश्वविद्यालयों शोध और नवाचारा माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो है। वे आज सीकर रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय माए अहलकारा सागे मीटिंग माए बोल रहा है। ई मौके श्री बागड़े विश्वविद्यालय माए विकास रा न्यारा न्यारा काम जनता ने सौंपया। वे विश्वविद्यालय परिसर माए करीब 10 करोड़ रुपए रा खर्च बनाई जा स्वास्थ्य केंद्र छात्र संघ रा दफ्तर और शोध करण वाला विद्यार्थियों सारू बालक छात्रावास रो उद्घाटन कीनो। वठे अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान श्री बागड़े नवी शिक्षा नीति ने असरदार तरीका लागू करण बाबत कहो। राज्य सरकार कानियों जनतारा भला सारू चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वारी जानकारी जनता ताई पूगावन सारू ग्राम रथ अभियान चलायो जा रियो है। इनातेत सलूम्बर जिला रा ओडा और अदवास समेत के गांवा माए कार्यक्रम राखी जिया जठे लोक कलाकार योजना वारी जानकारी गीता और नुक्कड़ नाटका रे जरिए आसान भाषा माए दीनी। बाड़मेर जिला में आई ई अभियान सारू खास उमाव नजर आ रियो है। और ब्यूरो महाना खबर नवीसू।
3: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए

0: ये इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित LED ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आम जन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आम जन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: जोधपुर रो 568वां स्थापना दिवस आज हरा कुमाऊं सागे मनाइयो। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में राखी जा खास जलसा माए न्यारा न्यारा हलका माए चोखो काम करन वाला 19 जना ने मारवाड़ रत्न नवाजी चिया। इनु पहले मेहरानगढ़ अर जसवंत थड़ा माए शहीदा ने फूल चढ़ार सिरथा भाव सागे याद करी चिया। ई मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मारवाड़ री ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने नमन करता थका जनता ने बधाई दीनी। ध्यान जोग है कि राव जोधा जी साल 1459 माए जोधपुर बसायो हो। अरब मौसम, प्रदेश माए पाकिस्तान री सरहदू लागुड़ा जिला माए जबरदस्त गर्मी बीच लू बाज रही है। आज बाड़मेर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वठे 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। जैसलमेर और बालोतरा माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ऊंचो रहो। इन अलावा बीकानेर और जोधपुर माए लू बाज रही है। कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ माए पड़ रहा जोरदार तावड़ाऊ जिंदगी माथे असर पड़ रो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा आकाशवाणी ने बतायो कि राज्य रा आतुणी हलका माए लू रो दौर आवता 3-4 दिन ताई चाल तो रहवन रा आसार है।
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां देखी जा सकती है।
1: इन बीच राज्य रा उत्तराद उगनी हलका माए आज भी बिरखाऊ गर्मी थोड़ी सत्ता मिली। भरतपुर माए दोपहर पाछे बरसात हुई। धौलपुर, अलवर, चूरू और झुंझुनू समेत कुछ जिला माए अंधड़ सागर बिरखा रा समाचार है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाई चियो। नुआ जमाना री मरहम पट्टी री शुरुआत करण वाला फ्लोरेंस नाइटिंगल री जयंती रा सिलसिला माए ओ दिवस मनायो जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखी जा जलसा माए 15 नर्सिंग पेशेवरा ने साल 2026 सारू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल इनाम देर नवाजा। प्रदेश में आई नर्स दिवस रे मौके कई कार्यक्रम राखी जा। झुंझुनूरा BDK अस्पताल माए चोखो काम करने वाला नर्सिंग कर्मचारियां रोमान करी जियो। इ मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग नर्सिंग कर्मचारियां री निस्वार्थ सेवा री सराहना कीनी।
3: आज जो हमारी नर्सिंग कॉलेज है उसका भी बच्चियों ने बड़ी सुंदर रंगोली बनाई और इस अवसर पर जो मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है उसमें वो स्वेच्छा से रक्तदान भी करके समाज में जो समाज सेवा का रक्तदान का जो मैसेज है वो दे रहे हैं। और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय हमारी जो बेटियां हैं और ज्यादा स्वस्थ बने, सफल बने और इस अवसर पर नर्सिंग डे के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हूं। पेपर लीक री शंका बीच नीट UG 2026 परीक्षा रद्द, मामला री जांच CBI ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूला माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो पश्चिम एशिया माए चाल रही तनातनी बीच भारत माए घरेलू गैस रो उत्पादन बेधर 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदू लागुड़ा जिला माए जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात। बाड़मेर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
4: FM 102.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
5: इसका कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनना रहा सगला किसान भाई बहना ने बवरी पूनिया और
1: गंगारा मोकड़ा मोकड़ा राम राम
0: राम राम।
1: देखो आप चौपाल आप गया बवरी बहन और आप किसान भाई जो बात करा आज देखो के कोई आंधीर मेर और बारे मौसम ही सोई हो रहा है और 2-3 दिन गर्मास बहुत जोर को और गर्मास देखो तावड़ियों तो ठीक है पड़े जिद थोड़ी हुम्मस सी हो गए रे अजीब सो मौसम हो जाइए 2-3 दिन बाद में क्यों क्यों आ ही जाए। और आज देखो के कटे कटे ही कई जगहों समाचार हैं कटे कटे ही काल भी थोड़ा बहुत छांटो छिड़को हो कटे कटे आज हुए है और आपने अठे भी आज थोड़ी आंधी छांटो छिड़को और वो हुए तो 4-5 दिन गर्मी के बाद में यू कर दे है रात गर्मी तो रात मिल जाए पर देखो कि एक हिसाब देखा हमने खेती बाड़ी की बात करा तो 15-20 दिन लगातार देखो तावड़ियों तप्पे लू चल रहे हैं जब अपनी जमीन तैयार हुआ है क्योंकि आपने जमीन की तासीर ए हिसाब की बनेड़ी है पर वह देखो प्रकृति है आ सालांग मैंने लू ला चाली को नहीं और चलने तो भी कोई 1-2 दिन चलने 15-20 दिन तो लगातार तावड़ी पड़े क्योंकि 3रे-4थे दिन तावड़ी पड़ के छंटो छिड़को आ जाए आंधी आ जाए ठंड हो जाए। पर आप देखो के किसान मिनख हाँ और वो ठाली रुत चल रही है और ठाली रुत का मायने जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है आप काम क्या करा किसान भाई ने क्योंकि आगे टेम पड़े है तो सब पहलो काम जो है वो जै किसान भाई आज तक माटी की जांच नहीं कराई है वो ए टेम में माटी की जांच करा ले क्योंकि माटी की जांच होगी भी को स्वास्थ्य कार्ड बनेगो अपने कन आवेगो भी के मायने के चीज चाहिए कौन सा पोषक तत्व की कमी है कौन सा पोषक तत्व अभी मैं जमीन में देना ही है जमीन में कौन सी फसल बढ़िया उसके और यदि पानी लग गए तो सागे पानी की भी जांच करवा लें और स्वास्थ्य कार्ड आवेगो जब तक आप अपनी फसल के बाहने को टेम होगा जब तक आप जो भी चीज चाहिए भी मैंने तैयारी कर लेंगा पोषक तत्व की वो दे देंगे
0: बिल्कुल। और देखो के जब खेत खाली हो जाए एकदम ठालो काम हुआ तो भी वक्त है जो वो काम कर लेना चाहिए आप ना और ये वक्त रबी की फसल आरो काम हो ही गयो रबी की फसल को काम होया बाद में है जो अपना मिट्टी की जांच ना आप करवा ले वहाँ और खास करके देखो के मिट्टी की जांच से फायदा ही फायदा है कि एक तो आपने बिको पीएच को मान को बिरो पड़ जाए है और दूसरों यह है कि मिट्टी जांच से भी कि आप उत्पादक क्षमता भी आज की बढ़ा सका हाँ और एक दूसरी यह है कि भाई जो आप खर्चो मान लो के खाद आप तैयार कर रहा कि यार खेत में आप घेरिया वहीं यहीं कुलडी बनावा अरबी के बाद में है जो चारों का बिन छिड़क दे वहाँ हाँ ठाला बाला दिना में तो भी मिट्टी ने अपनी खाद ने अगर आप थोड़ी सी तैयार करके डाल दे वहाँ तो बात ज़्यादा है जो को काम करेगी और यह तो मान लो कि आप घरे या मान लो बटोड़ा कने या कुलडी बनाए रखा बठापा घेर बोक रहा हर बाद में अपना जे ठाला दिन हुए भी यही है जो को आप अपनी खेत में घेर दे वहाँ पर बिन थोड़ी सी तरीके से अगर तैयार करके जमीन अपनी जमीन में खेत में डालांगा तो वह बहुत ज़्यादा काम करेगी। पर देखो कि एक यह है कि भाई इम खर्चम भी कमी आवे खर्चम कमी ही तरीका हुआ है कि अपनी मिट्टी की जब आप जाँच करावांगा तो भी मैं सही पोषक की मान लो कि तत्व कितना ही बन मान लो कमी कौन से की है जरूरत के हिसाब से कितो घेरनो चाहिए जाए भी की सारी जानकारी आपने मिल जाएगी। आप अगर बिना जानकारी के घेरांगा तो अपना अपने हिसाब से घेरांगा खटे ज़्यादा और खटे कम घेर देवांगा लेकिन अगर आप मिट्टी की जांच करवा ली है तो बी का पोषक तत्व की आपने बेरो पड़ जाए तो बी का अनुसार ही आप अब खाद है जो भी कमाई ने जमीन में डालांगा तो बी सके का अपनो खर्चो भी कम हो वे लोग
1: बिल्कुल बहुत बड़ी बात थी या बताइए कि भाई आप अपन बेरो

0: ही को नहीं अपने खेत में क्या की कमी है, क्योंकि जांच कराए बिना अपन क्या मेर पड़े। तो भैया भाई बात है, आप कोई आदमी बीमार होगा तो क्या करा भाई, पहले जांच करा लो ताकि बेरो पड़ जा के समस्या के शरीर में। तो भाई चीज है यो, एक हिसाब जमीन की जांच कराना आपन अपने खेत की समस्या को बेरो पड़ जा। और तेजी बात करो, आप खाद गिर दी और हर साल एक एक बात की खाद गिर दा, तो एक एक तरीका का पोषक तत्व की पूर्ति तो होगी, बाकी का जो का पोषक तत्व तो अच्छी है बाकी कमी कमी होगी। तो बा वो जो संतुलन है ना जो को चाहिए भाई शरीर में, सही सही सा विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, अनेक प्रकार की चीज हैं बची हैं। तो बिया ही खेत की माटी के मायने भी है ना, हर प्रकार की चीज चाहिए। तो आपा ने जो को स्वास्थ्य कार्ड की आप बात करा, माटी जांच कराऊंगा, एक स्वास्थ्य कार्ड आओगे माटी को जी हाँ, बीके मायने लिखेड़ो आवे सारी चीज। आपा कोई भी नजदीकी कृषि वैज्ञानिक है, कृषि अधिकारी है, भी मिल के बैठ के यदि बुझांगा ने तो बता देगो थारे खेत में ये फसल बढ़िया उसके हैं और ये चीज की कमी है तो यो गेर दो। कोई जे आपने उरे की विशेष की बात करा तो आपने उरे माटी में खाद की बहुत ज्यादा कमी है,
1: हाँ
0: पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी है, मोटो दानो है और बीघे मायने खाद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। तो जहाँ थे बात करी कि एक तो तैयार होएड़ी खाद, तैयार होएड़ी खाद भी कई बार क्या कुरड़ी या छठाली रुता में गेरा वो गोबर सुखेड़ो है वो मिया होगो जो दे उपरती रहेगो और पानी नीचे बैठने भी में जगह को मिलेगी। तो तैयार करेड़ी खाद भी जब खेत बीज जा भी 10-15 दिन पहले ही गिरा और बिन पूरी में बराबर बुरका एक दिन पूरे खेत में। तो और भी कसा गई कई बार के वह के जहाँ पाया कह उडार खेत है
1: हाँ
0: भाई, बारिश भी हो रही है सोप की मोरे तो भी एक ठहरो जो को है वो उड़ गयो या फिर उनका मायने फसल में ग्रोथ को नहीं हो रही, बढ़ रही को नहीं
1: बिल्कुल, कई जगह झाड़ियां
0: और
1: पड़ जाएंगी।
0: बिल्कुल। और कई बार पीलो जो है तो वो उनको मतलब है वह उन जगह के मायने पोषण तत्वों की कमी है। कई जगह आपने क्षारीय भी जमीन हो खेत का मायने, कई जगह आपने देखो कई बार क्या कराना के भाई आपने जिप्सम ले आके घेर दो
1: हाँ
0: और आपने कई बार क्या करा खंदेड़े की माटी घेर दो। तो ये सारी चीज हैं। तो कई दोमट माटी का खेत तो में एक बाई मायने दूसरी चीज की कमी हो और कई बालू माटी का में भी मायने दूसरी चीज की कमी हो। तो वह आपने कृषि वैज्ञानिक जो है बता देगो कि इतनी मात्रा के मायने थाने फास्फोरस गेरनी है, थाने जिप्सम गेरनी है, थाने कौन सी की है खाद है बा गेरनी है, गोबर की खाद गेरनी है की गेरनी है, बस सही सही मात्रा में आपन बता देगो। और भी के बाद में यह भी बेरो पड़ जाओगे कि आपने खेत के मायने कौन सी फसल है बढ़िया बढ़िया उसके,
1: बिल्कुल
0: फिर आपा जहाँ थे बात कर रहे हैं कि आप उत्पादन बढ़ा सका तो वो आपन उत्पादन बढ़ाना तरीका आप ही मिल गयो, आपन बेरो पड़ गयो कि यो अनाज ज्यादा होगो आप वो ही अनाज बहाँगा अपने खेत में तो उत्पादन अपना आप बढ़ गयो। और लागत की कमी की यह बात है कि आप गेर रहे आंधा धुंध कोई भी चीज बाजार में लाके अपनी मर्जी की अब फिर भी अनाज को नहीं हो रहे हो तो फिर अपनी तो लागत हर बार बढ़ रही है। और आपन हूँ बेरो पड़ गयो, आपने जो कृषि अधिकारी में बता दियो थार खेत में यह चीज घेर लो, वापा सही सही मात्रा में घेर ली और एक बार घेरने में 2-3 फसल या 2-3 साल की फसल आप आराम ले इसका, इतने दिन में अभी की कमी को नहीं आ तो अपनी लागत कम होगी।
1: बिल्कुल। और देखो कि जब मिट्टी की जांच करवा लिया, मिट्टी के स्वास्थ्य में है जो इसे सुधार होगा,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि कोई चीज की अगर आप जांच करावांगा जदि भी को है जो आपने कह करने का हल मिलेगा कि भाई ये चीज की आ कमी है तो भी चीज की कमी की वापा पूर्ति करांगा। तो लगातार अगर आप मान लो कि जांच आपने मिट्टी की करवाता रहा तो आपने खेत की है जो मिट्टी है जो लंबे समय तक उपजाऊ है जो की बनी भी रहेगी और खास करके पैदावार में देखो वृद्धि हो जाएगी कि मान लो संतुलित सारी चीजें आप पोषक तत्व मिल रहे हैं आपने जमीन ने तो जठे जबकि फसल आप पावाऊंगा तो बिन पूर्व पोषण मिलेगो
0: बिल्कुल
1: और पूर्व पोषण जब फसल ने मिलेगो तो वह एक से बड़ा वार करेगी। तो भी से की है कि आपने फसल है जो को बढ़िया होगी और देखो बढ़िया फसल को तो दानों ही अलग ही होवे है और वह अलग ही दिखे और खेत में आप कई खेत हम देखो खाद बिल्कुल ही नहीं डाले तो वह खेत और एक खाद डाले खेत दोनों अलग अलग ही दिखे।
0: बिल्कुल
1: तो जिस तरीके से अगर आप मान लो कि मेहनत करांगा भी को फल है जो को आपने ई रूप में मिलोगो को भाई आप जो को मिट्टी की जांच करवाई भी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो तो भी सही है कभी का जगह भी पोषक तत्व जमीन ने पूरा मिला और जमीन ने जब पूरा पोषक तत्व मिला तो जकी फसल आप डाल रहे तो भी फसल ने भी पूरा पोषण है जो को मिलो तो इसे की है
0: बिल्कुल
1: कि वो भी की पैदावार है जो की भी बढ़ोतरी होगी जो को भी फसल आप बोवांगा वह फसल है जो की अच्छी ग्रोथ है जो की करेगी और जो की मान लो कि मिट्टी को जकी भी समस्या आवे जिया थे बताई गई शारी है अमली है तो बांको भी आपन जदी पतो चाला वो जद है जो मिट्टी की आप जांच कराऊंगा। या तो आप खेत में जावा तो चारों का नीचे की धूल पड़ी हुई बिन देख के आप यही लगे भाई सगड़ी एक सी है पर है जो भी की जांच कराऊंगा जद आपन भी को अमली है या शारी है इम के चीज की कमी है भी चीज के सारो पतो है जो आपने जांच हुई चाले को
0: बिल्कुल। और देखो के माटी की जांच आप करावा पण आपने अठे पानी की भी सिंचाई की व्यवस्था भी लार ले कुछ साल मायने लगभग लगभग किसान कर रखी है तो जो को पानी है भी मैं आपने भूमिगत जल है भी मायने नमक की मात्रा जाता है तो बी की भी अपन जांच करा लें। कई बार के वह के कई किसाना के खेत का मायने बोई पानी अच्छी उपज दे और कई किसाना के बोई पानी अच्छी उपज कौन दे तो पानी की भी जांच करा लें तो बिम बेरो पड़ जा के आपने खेत के मायने यू पानी लगाने के लिए कौन सी चीज़ की पूर्ति खेत में करनी चाहिए या फिर यू पानी लागण लायक है या नहीं है। कई बार यह होगा दो तीन साल तो फसल हो जा और फिर खेत खराब हो जा तो ईसो काम नहीं करा जब पानी की व्यवस्था करा भी टाइम आप भी पानी को सिंपल और अपनी माटी को दुनिया को सागे जांच करा लें भी मैं बेरो पड़ जागो। और यह भी होगा कई बार के पानी वो पानी लगाने के लिए खेत में कुछ विशेष पोषक तत्व देने की जरूरत हो तो अब आप देते हैं फिर आप पानी लगा लें ताकि अपन खेत खराब नहीं हुए तो यो ध्यान भी रखा पानी आपने नमक ज्यादा है और पानी की समस्या भी बहुत है तो पानी चुको है वो इसी फसल बोवा का कम पानी देना पड़े क्योंकि इसी फसल बोवागा जब ज्यादा पानी देना पड़ो तो जमीन जल्दी खराब होगी तो इसी फसल बावा जंग मैंने बहुत कम पानी की मात्रा देनी हुआ है और अपनी फसल अपनी जमीन जकेबा खराब नहीं हुआ। और थे जब पानी की बात करो तो देखो हाँ। क्या गर्मी भी और आप मे पानी की आज बात कर रहे हैं आप एरियो वो है जठे देखो दूर दूर सिर पर दर दर के पानी लाया करता पानी की समस्या होया करती तो भी पानी की समस्या ने लेके आपने अठे बहुत गीत नाथ भी बने रही तो किसान भाई मनोरंजन भी करवा दो
1: सुनाओ सारे लोग गीत

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: तो अंतराल लिया आपा, और अंतराल शुरू पहला एक गीत सुनो, थे ठावड़ी सी रचना सुनाई। आज देखो पानी की आपा बात कर रहे हैं और डगड़ारम और साथियारी गाइड या रचना सुनी आपने ठैया ही कि पानी बहुत मुश्किल हो और विशेषकर पीने वालों पानी, क्योंकि जमीन को पानी खारो हो तो पीना पानी जी गिलास डूर जा तो बहुत दूर हो। तो घी तो आपके घर हुए दिन के बिलोए और फेरू निकलो पर पानी कटू लिया तो बहुत मुश्किल हो पानी। पर अब देखो के बी की कीमत जकी है भाभी, अपन समझनी है, चाहे खेती करो चाहे घर काम में लो, पानी आपने बहुत कम है, भूमिगत जल भी कम है, पीना तो आपने बहुत ही समस्या अभी भी बनी रही है। तो पानी को विशेष बचाव करा, ध्यान रखा। और अपा खेती बाड़ी की जब बात कर रहा, खेत के माटी परीक्षण की बात कर रहा, तो देखो के किसान को उत्पादन बढ़े लागत कम हो एक खातर सरकार भी बार बार योजनावां, नई नई योजनावां चलाती रहे हैं, तरह तरह की योजनावां। और किसान यदि जागरूक हुए तो वहाँ योजनावां को लाभ भी ले सके है, और लाभ लिया देखो कि इतना हुआ कि उत्पादन में वृद्धि भी हुए और जो कि लागत है वहाँ लागत क्या की हुआ, किसान की बीज खरीदे, खाद खरीदे, भी के साथ गई खेत में काम करने वाला उपकरण है जिसका भी काम आने वाला वह खरीदे, तो वह सब चीज़ों पर एक अनेक प्रकार की योजना किसानों के लिए चलाई रही हुई। तो अपन ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सो काम आप करा अभी टाइम, कौन सी योजना जो की अभी लाभ आप ले सका, तो किसान ने जागरूक जरूर रहना पड़ेगा।
5: बिल्कुल, और देखो कि किसान भाई जब जागरूक रहेगा जदी है जो बैंक फायदो ले सके है, और सारी जानकारी पूरी जानकारी लेके ही आप है जो कोई काम करांगा जब आप काम सफल भी होगा। कई बार के है आप एक दो चक्कर काटा और भैया योजना है, कदे कोई कागजों को ले जावा, कदे कोई सोई कौन ले जावा, बाद में सोचा पड़े रहने दो, इतने कई बार के हाकुन चक्कर काटा और एक बार कह कर तारीख दे दी होगा भाई इस तारीख तक यो काम थे कर दियो, बा कई बार चली जावे है और बाद में अपन भी चीज को नॉलेज हो जाए भाई आ चीज में कर दे तो बढ़िया रहते। तो कोई चीज की जगह तारीख दे रही हो तो एक तो बा कितनी तारीख में शुरू हो रही है, कितनी तारीख ने खत्म हो रही है, भी चीज को भी आपा ध्यान रखा। फिर के डॉक्यूमेंट आपन चाहिए, के कागज आपन लेके जाने पे सारा कागज है जो को आपा सागे लेके जावा, ताकि आपन है जो को बार बार चक्कर कौन काटना पड़े।
4: और भी यहाँ भी कागज कहीं ने वह अपना जितना भी कागज है वह अपना तैयार रखा, क्योंकि बाकी जगह भी काम आवे आज गांव के सागे सागे तो कागज तो जरूर बनवा लेना चाहिए आपका।
5: बिल्कुल, और एक देखो के जो भी कागज है आपनो जरूरी कागज है बिन एकदम ठायो रखना चाहिए कि भाई एक जगह है जो को अपना सारा कागज है जो को आपा ठाया रख रहा के तो जब भी आपा जरूरत पड़ी तो इन्ने बिन्ने गेरेडो या एक कागज आपा खटाई रख दियो एक खटाई रख दियो तो एंड टाइम पे आपा ने लादे गोनी। तो कागज जका भी आपा बनावा अपना एक जगह एकदम है जो को ठाया माने रखांगा जब भी आपा जरूरत पड़े अपना निकाला और ले जाओ। और सोच के बढ़ते गए जो को एक दो कॉपी भी आपा है जो को बाकी एक्स्ट्रा करा की रखा तो ऐ जकी चीजा इन तरीके से आपा रखांगा तो ये मान लो कि एंड टाइम पे आपन कोई समस्या को नहीं होएगी और जकी तारीख तक आपन काम दिए भी शु पहले आपा कर लेवा। और एक ई चीज पे नहीं रहांगा भाई आखिरी तारीख तो पड़ी है, कई बार आलस कर जाओ आखिरी तारीख तो पड़ी है अभी तो देखो पड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना आपने जब आपने बेरो पड़ गयो आ योजना है इनको फायदो आपन लेनो है तो भी की लास्ट डेट मत देखो लास्ट तारीख मत देखो आपन वो फार्म बराणो है कि तरीको बराणो वो बरा के आप समय शू आ जावा क्योंकि एंड टाइम पे देखो कई बार है जो को आजकल है जो को इंटरनेट के माध्यम है जो कई बार चल रहे कई बार सर्वर चल रहे को नहीं है तो ए भी समस्या आ जावा तो अपन जे वक्त मिले भी हिसाब से अपन अपनो काम है जो को कर लेनो चाहिए।
4: बिल्कुल, देखो के जो को किसाना की योजना की बात करा पा सौ मोटी चीज समस्या जो क्या है कि जो मशीन काम में आवे खेत के मायने जितना भी उपकरण काम आवे उपकरण आप जका लाना चाहवा किसान कई बार यहाँ सोचे कि यू लिया वा मशीन है तो काम सुर जा पर बहुत महंगा महंगा हो कोई भी उपकरण हो खेत का बहुत महंगा है तो आप देखा कि हर एक उपकरण पर जो सरकार की ही भाई योजना सब्सिडी मिले मुआवजा मिले तो सब्सिडी कितनी मिले कौन से उपकरण पर यू आप बेरो पाड़ लिया और फिर आप लिया एक यो भी हुआ कि एक किसान फिर भी मान लो एक किसान को सब्सिडी के बावजूद भी एक किसान को लिया सके तो अड़ोस पड़ोस का दो या तीन चार किसान मिलके भी वह उपकरण लिया एक बार उपकरण थोड़ो सो महंगो पड़ेगो पर फिर देखा आप समय की बचत हो लागत की भी कमी आवे क्योंकि दूसरे को मशीन काम कराऊंगा तो लागत में भी ज्यादा होगा तो धीरे धीरे क्या है कि वो उपकरण घर को भी हो जाएगा और सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा कई कई चीज़ें आप बात करें कई कई चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिले तो आप यो देख के ला कोई भी मशीन ला छोटी हूँ लेके बड्डी तक भी नए पहली बेरो पाड़ लें जो भी अपन यहाँ नहीं बेरो पड़े कट्ठे भी तो जो का कृषि अधिकारी अपना नज़दीकी बाँव बेरो पाड़ लें अपना पटवारी गिरदावर अपने जो पंचायत में जो को बैठे हैं अपने बाँ के मायने जाके बेरो पाड़ा का भाई माने यो उपकरण लाना है कि मायने कोई के व्यवस्था है कितनी है और क्या लेवा और क्या सब्सिडी मिल सके तो अपन पूरी की पूरी समझा के जो कह बता दे सी। और कई बार क्या हुआ कि सब्सिडी के सागे सागे बैंक ऋण भी मिल जाए तो बहुत धीरे धीरे किसान चला क्योंकि किसान ने जका ऋण मिले हैं वह भी बहुत सस्ती दर पर मिले हैं तो बाकी भी काम में बान किसान लेस के है तो ए साबू जितनी भी मशीन है बाकी लाने की सोचा खेत में काम में लेने की सोचा कई बार यह हुआ एक वो बनाए जाए कि नहीं खेतों के मायने मशीना चलाना यो जागो चीज ने उपयोग करना कोई भी नई तकनीक है एक बार आप देखांगा बिन काम में लेना बहुत मुश्किल है भी डर भी लग गएगो और भी की समस्याएं भी आएंगी पर भी तकनीक ना अपना काम में लेने लग जाऊंगा भी मशीन ने काम में लेने लग जाऊंगा तो धीरे धीरे सहूलियत हो जाएगी और आप बेरो पड़ेगो अपन समय अपनी ऊर्जा दोनों चीज़ बच रही है अपने लागत भी कम हो रही है तो कोशिश करा के नयो जो मशीनीकरण है खेती को भी मायने कठाऊ व्यवस्था जहाँ भी हो रही है थोड़ी बहुत भी मैं भागीदार बना और भी ने लावा।
5: बिल्कुल, और देखो के जबकि आपने फसल आपा बाहर रखे भी की फसल बीमा योजना भी है जो को अपन करानी जरूरी है क्योंकि खेड़ी फसल है खेत में तो भी को बीमो है जो को करो जावे है और जबकि भी मान लो प्राकृतिक जगह आपदा आ जावे भी को के कई बार अनोनी हो जाए और ओला पड़ जाए या अतिवृष्टि हो जाए भी से कि एक अपनी खड़ी फसल नष्ट हो जाए पकी पकाई फसल नष्ट हो जाए तो भी को मुआवजो है जो को आपने मिल जावे तो जकी भी प्राकृतिक आपदा ही बात सब बचन खातर है जो को आपने फसल को फसल बीमा है जो को आपन जरूर शू करवाना चाहिए।
4: बिल्कुल है, और बीमो जो को है वो देखो फसल बो वापी टाइम में हुए अपन बेरो बात को और कितने बीघा के मायने कौन सी फसल आप बोई है वो सारो के सारो पर फॉर्मू आपने कुछ भरवाए जाए और भी कई साबू अपनी फसल बीमा हुआ है तो वो भी ध्यान रखा टेम टेम पर और फिर यो भी ध्यान रखा कि अपनी फसल जो की है बा प्राकृतिक आपदाओं कितनी खराब हुई है कितने तुरंत उनको सर्वे करवा के और फिर वह भी डाटा जकाई वह बेचा आप ताकि अपन सही बीको जो गाँव जो है वो मिल सके। बी के सागे सागे देखो के एक किसान क्रेडिट कार्ड है।
5: हाँ।
4: हर बार किसानों बात कहेंगे भाई जो किसान है क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हो बहुत बढ़िया बात है, जो किसान नहीं बनवा रखे हो कई बार थे जिया कह रहे हैं ना कि इतना कागज लागे कौन करेगा माथा पची कौन इतना चक्कर काटेगा, चक्कर में बहुत सारा किसान है कौन ही काम में ली। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा रखे वो बनवाना चाहिए, क्योंकि किसान का जो क्रेडिट कार्ड है भी जो ऋण मिला है वो सौ सस्तों ऋण हुआ है और वो अपा एक सागा अपन बैंक देते साख हुआ है किसान की जितनी जमीन है भी हिसाबों बिन भी इतनी जमीन है कह रही हो इतना रुपये जो है वो चुका सके हैं जमीन भी हिसाबों बैंक बिन ऋण देवे, तो एक यह साख है किसान की जमीन के आधार पर तो वो भी को उपयोग करे और एक मुश्त जिकी अपा कोई भी काम करूँ अपन तो एक मुश्त वो रुपये आ गयो अपा कोई भी काम में लेस कहाँ भी ने और फिर अपा बैंक ने सही टाइम पर चुका दें ताकि बैंक अपन दोबारा भी ने ऋण दे दे।
5: बिल्कुल, और अब देखोगे घड़ी इशारों करिए कि कार्यक्रम को वक्त है वो पूरा हो रहे हो, तो आपने किसान भाई बना शू फेरू मिलन ताई लेवा सीख और करा राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 7:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360977।

अली गनी और रागिनी के गाए इस गीत के साथ ही आज का राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी @90 साल कुमार अजय से अमित कुमार की भेंट वार्ता।

0: आकाशवाणी चुरू के सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। आकाशवाणी एट 90, जी हाँ साथियों, आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसे पूरा आकाशवाणी है वो उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और इसी क्रम में देश की जानी मानी अपने अपने क्षेत्र की विभूतियों को आकाशवाणी के साथ संवाद करने का अवसर भी मिल रहा है। इसमें चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति हो या शिक्षा क्षेत्र हो, एवं हमारे जो गणमान्य श्रोता हैं उन सभी के साथ आकाशवाणी है वो समय समय पर संवाद स्थापित कर रहा है। और किस प्रकार से आकाशवाणी की गौरवशाली विरासत है वो जो हमने 90 सालों से लगातार जारी की है उसको किस प्रकार से आगे अनवरत रूप से जारी रहे, इसी कड़ी में हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है कुमार अजय जी को। आप उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार, साथ ही साथ इसके अलावा आपकी एक अन्य पहचान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप जाने माने साहित्यकार हैं और आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी है। तो कुमार अजय जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। अजय जी, जब हम बात करते हैं आकाशवाणी की और आपका भी, जो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, आप चूरू जिले के गांगू है गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक ग्रामीण परिवेश से आकर आप इस आज इस पोजिशन पहुंचे हैं। और जब आप बात करें जब आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की, तो किस प्रकार से ग्रामीण जो परिवेश है उसमें आकाशवाणी ने अपनी भूमिका निभाई है?
1: ग्रामीण परिवेश में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं दूसरी बातें नहीं करते हुए अपने जीवन में, मेरे जीवन में जो अनुभव आकाशवाणी के उससे शुरू करना चाहूँ, तो हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो घर में रेडियो भी नहीं था। उस समय रेडियो भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हालांकि मैं बहुत उम्रदराज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो घर में रेडियो नहीं था। तो हमारे पास में एक जो है बिजली घर था, बिजली घर में जो कार्मिक थे हीरा लाल जी, उनके पास एक रेडियो हुआ करता था। तो हम जो है खाना वाना खाने के बाद मैं और पापा दोनों जो है वहाँ उन हीर जी के क्वार्टर में चले जाते थे, और वहाँ पापा जो है, पापा को हमेशा वो BBC के समाचार सुनने की आदत थी, और उस समय जो थोड़ा बहुत जो है ना वो रहता था, तो उस तरह का शुरुआती मेरी जो है उसके साथ यादें जुड़ी हुई। बाद में तो रेडियो खैर आए भी और बहुत सारा, उसके बाद तो ये आकाशवाणी चूरू भी जब शुरू हो गया तो उससे तो बहुत अच्छा जुड़ाव रहा। और मैं भी मतलब जब आकाशवाणी चूरू से और जयपुर से, फिर तो एक साहित्यकार लेखक के रूप में, कवि के रूप में भी जुड़ा रहा, तो इस तरह की यादें हैं। और हम देखते हैं कि रेडियो हमारी जो पीढ़ी है उसने बहुत बड़ा सफ़र तय किया है, लेकिन हमारे जो शुरुआती सफ़र है उसमें रेडियो सबसे बड़ा जो है मनोरंजन का और सबसे बड़ा ही सूचना का साधन हुआ करता था। हमसे पहले तो खैर हम जो बात करें तो आज़ादी के आंदोलन में रेडियो की बड़ी भूमिका रही। महात्मा गांधी के जो है भाषण जो है रेडियो पे प्रसारित होते थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपना आंदोलन ही बड़े रूप में जो है इसमें रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका रही, वो रंगून से और वहाँ से जो है अपना रेडियो पे प्रसारण करते थे। हमारी जो आज़ादी की जो घोषणा है, हमें कहते हुए खुशी प्रसन्नता है कि आज़ादी की घोषणा नेहरू जी ने जो मध्य रात्रि को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को वो जो है उसमें आकाशवाणी से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था। तो आकाशवाणी इस तरीके से बहुत बड़ा साधन रहा है। और जिस तरह की संस्कृति हमारे देश की रही है कि हमारा देश जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान, कृषि प्रधान देश है, तो उसमें किसान जो है, हम उस दौर में कहेंगे तो किसान के लिए एक बड़ा सहारा रहा कि खेत तो खेतों में किसान जा रहा है, काम कर रहा है, तो रेडियो जो है उसके लिए सूचना का भी और मनोरंजन का भी बड़ा एक साधन रहा। और पुराने जमाने में तो हम सुनते हैं बड़ा ही क्या ग्रेस और गरिमा रही होगी रेडियो की, जब मतलब रेडियो के भी लाइसेंस हुआ करते थे, हमने सुना है। और जो है रेडियो, हम ये वो तो हमने ही देखा है कि रेडियो जो है बारात में लोग रेडियो साथ लेके जा रहे हैं, तो वो उसका एक अपना अनुभव और एहसास हुआ करता था, तो उसको हमने जिया है। और वो एहसास आप दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ अब उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं।
0: जी, बहुत ही शानदार बात बताई कि किस प्रकार से आपने कहा कि गांधी जी ने जो अपना भाषण है वो आकाशवाणी के माध्यम से, 12 नवंबर को वो दिन था और इसी 12 नवंबर के उपलक्ष्य में जो 12 नवंबर है वो आकाशवाणी के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है, तो चूरू आकाशवाणी भी 12 नवंबर को स्थापित हुआ हुआ है। और जब हम कहते हैं देश के लिए गौरवशाली क्षणों की बात करते हैं, चाहे वो 1971 की विजय गाथा हो या कारगिल की विजय गाथा हो या पोखरण का जो हमने परमाणु परीक्षण किया है, इन समस्त विजय गाथाओं का उद्घोष भी आम आदमी ने आकाशवाणी के माध्यम से, आवाज के माध्यम से अपने कानों तक पहुंचाया है। बात करते हैं हम जब आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी ने गांव में शिक्षा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक विज्ञापन चला था, स्कूल चले हम, तो आप हमारे श्रोता साथियों को बताइए किस प्रकार से इस विज्ञापन ने गांव-गांव में है वो शिक्षा के लिए अलग बनाया।
1: बिल्कुल, न केवल इस विज्ञापन ने, बाद में हम जब अब जो वर्तमान समय देखते हैं उसमें स्वच्छता पे जिस तरह के, जिस तरीके से वर्तमान

0: सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस आंदोलन को जो ऊंचाइयां दी है उसमें भी रेडियो का बड़ा योगदान रहा है। प्रौढ़ शिक्षण जो जिसको कहते हैं उसमें रेडियो का बड़ा योगदान रहा है, और खास करके जो कृषि साक्षरता जिसको कहें या कृषि शिक्षा जिसको कहें उसमें जो हमारा जो आकाशवाणी है और उनके जो प्रसारण है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी सारे आकाशवाणी केंद्रों के साथ साथ हमारे चूरू आकाशवाणी केंद्र से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर और कृषि को लेकर जो कार्यक्रम जो प्रसारित किए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, बहुत ही उत्साह के साथ वो जो है ग्रामीण परिवेश में हमारे खेतों में हमारे घरों में वो कार्यक्रम सुने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। तो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु हर तरह की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा एक बहुत बड़ा दायरा है, उसमें आप किस किस तरीके से आप पर्यावरण को भी लेंगे, आप स्वच्छता को भी लेंगे, आप दूसरी जागरूकताएं जो जिस तरह की है कि किसी प्रकार की बुराई के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप दहेज के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, जो समय समय पर जिस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ से जो होते हैं उनको बहुत ही एक बड़ा एक श्रोता वर्ग है, चाहे कितने भी संसाधन आ गए हों दूर संचार के और सूचना के और मनोरंजन के, लेकिन रेडियो की जो भूमिका है और रेडियो के जो श्रोता हैं, रेडियो के जो प्रशंसक हैं, आज भी आप गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से रेडियो को लोग अपने सीने से लगा के घूमते हैं और किस तरीके से रेडियो उनकी दिनचर्या का बहुत बड़ा एक हिस्सा है और किस तरीके से वो उस रेडियो को अपनी जिंदगी के साथ जी रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर तरह के शिक्षण में, हर तरह की जागरूकता में रेडियो की बहुत बड़ी और अच्छी और सकारात्मक भूमिका रही।
1: जी, आपने बताया किस प्रकार से ग्रामीण जगह पर रेडियो है वो समस्त प्रकार की शिक्षा, चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा हो या बालिका शिक्षा हो या अन्य प्रकार की समस्त शिक्षाओं में रेडियो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने चौपाल की बात की है, मैं बहुत बार देखा भी है कि चौपाल में जब बैठते हैं तो एक रेडियो चलता रहता है, वो जहां पर जितने भी लोग बैठे हैं 15-20 सब लोगों के पास है, उसकी आवाज सुनाई देती रहती है। तो कार्यक्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। आज अपने जो मुखमंडल से अपने जो पसंद का कौन सा गीत है वो आप सुनना चाहेंगे?
0: मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, तो पुराने गानों में आप कोई भी किसी भी गाना सुनाना चाहें, आप मेरी पसंद का ही सुनाना चाहें तो सफर फिल्म का एक गीत है, बहुत ही मोटिवेशनल गीत है। मुझे भी जब कभी कभी इस तरह के क्षण आते हैं तो मैं भी उस गीत को सुनता हूँ। गीत के बोल हैं, तुझको चलना होगा।
1: जी, तुझको चलना होगा। आइए सुनाते हैं आपको अपनी पसंद का गीत, सफर मूवी का गाना।

0: तो गाने से आते एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम आप चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आकाशवाणी ने ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन किया है। आकाशवाणी ने सिर्फ शिक्षा के अलावा भी और जो जो कह सकते हैं क्षेत्र है, चाहे लोक कला हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो एवं अन्य समस्त प्रकार की कलाओं के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम जाते हैं जब पश्चिमी राजस्थान की तरफ, जहाँ पर मांगनिया गायकी है, लंगा गायकी है और अपनी तरफ की जो जो लोक गायकी है, उन समस्त गायकी को संरक्षण करने में आकाशवाणी की अहम भूमिका निभाई। तो आप अपने इस पे किस प्रकार के विचार है वो?
1: निश्चित रूप से जो स्थानीय हर क्षेत्र के जो स्थानीय कलाकार हैं, जो स्थानीय कलाएं हैं, उनको ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये जो बाजारीकरण का दौर है, उसमें ये सब चीज़ें एक तरीके से पिटती जा रही हैं, हाशिए पे जा रही हैं। तो उनको जो है, क्योंकि उनकी व्यवसायिक जो है उस तरह की उपयोगिता नहीं होती है कई बार, तो वो पिछड़ती जाती हैं। पर रेडियो ने इस चीज़ को बखूबी संभाला है। रेडियो ने जो है इन चीज़ों को मतलब एक तरीके से सहेजने और संवारने का काम किया है, और उन कलाओं को तो संवारने का काम किया ही है, उन कलाओं से जुड़े हुए जो लोग थे उनको भी एक बड़ा सहारा मिला है। हमारे यहाँ के भी जो मतलब लोक कलाकार हैं, भोपा हैं और हैं, उन सब के कार्यक्रम हम सुनते हैं यहाँ पे। तो ये एक बड़ी भूमिका है समाज में कि जो जो चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं, जो चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, उनको सहेजना एक बहुत बहुत बड़ा हमारा दायित्व भी है। लेकिन इस दायित्व को दूसरा कोई संस्थान समझे न समझे, आकाशवाणी ने, रेडियो ने इस दायित्व को बहुत अच्छे से समझा है और हम अपने यहाँ के उदाहरणों से इसको समझ सकते हैं। बाकी पश्चिमी राजस्थान में हम लंगा मांगनी और सब का जिक्र आपने किया ही, वो सब से आप समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ भी रेडियो है और जहाँ जहाँ भी उसकी अप्रोच है, रेडियो की मैंने देखा है जगह जगह, मैं अपनी सेवा के दौरान भी विभिन्न क्षेत्रों में रहा हूँ, राजस्थान के विभिन्न जगहों पर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी रेडियो है, रेडियो की अप्रोच है, रेडियो की कोशिश रहती है कि वहाँ के स्थानीय कलाकार और वहाँ के स्थानीय साहित्यकार, क्योंकि साहित्यकार है उनको भी अपनी बात कहने का एक अवसर मिलता है, तो वहाँ की जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, जिनको हम स्थानीय सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं, वो सब हैं, उनको रेडियो से अपनी बात कहने का अवसर मिला है। और कई कई जगह तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनको एक तरीके से आर्थिक संबल भी मिला है, कि वो भी अपने आप में साहित्यकारों के लिए, कलाकारों के लिए वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो आप अपनी बात कहने का अवसर मिले और उसके साथ साथ एक आर्थिक संबल मिले, तो ये काम रेडियो ने बहुत अच्छी तरह से किया और निश्चित रूप से उनके इन कलाओं के और साहित्य के संरक्षण में ये जो भूमिका है इसको नकारा नहीं जा सकता, एक तरीके से बहुत ही सराहनीय काम रेडियो ने किया है।
0: जी, आप जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक है, आपका सूचनाओं से लगातार है वो आमना सामना होता रहता है। आकाशवाणी 90 वर्षों से ये काम करता रहा है, लेकिन वर्तमान में जहाँ पर सोशल मीडिया का दौर है, सूचनाएं अनंत है, असंख्य सूचनाएं लोगों के पास है, उनमें से कौन सी सूचना सत्य है और किस सूचना को आधार मानकर अपन काम करे, उस पर एक श्रोता और किसी को भी है वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। तो आकाशवाणी इस मामले में एकदम, जो भी आकाशवाणी में यहाँ प्रसारित हो गया वो सत्य है, तो इस पर किस प्रकार से आप श्रोता साथियों को मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखो, आज के जमाने में सूचना के साधनों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सूचनाएं जितनी सही जाती हैं उतनी भी गलत सूचनाएं भी समाज में जाती हैं। वो जिन माध्यमों से जाती हैं उनका मतलब कोई वो नहीं है। आज मतलब आज रोज एक नई पोस्ट आ जाती है कि इतनी तारीख को पंचायत चुनाव होंगे, इतनी तारीख को नगर निकाय चुनाव होंगे, जबकि सरकार अभी इस पर काम कर रही है, अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसी तरीके से दूसरी सूचनाएं भी तरह तरह की आती रहती हैं, और पिछले दिनों तो हमने देखा कि हमारे बहुत बड़े एक अभिनेता थे, उनके उनके निधन तक की सूचना जो है बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने इस तरीके से चला दी।

0: तो वो जब इतने जिम्मेदार लोग हैं उनके वहां से ये हो जाता है, तो जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार और जो असामाजिक लोग हैं जिनको अपने केवल व्यू बढ़ाने हैं, जिनको केवल अपना कंटेंट ज्यादा ज्यादा लोगों को बढ़ाकर 2 रुपए कमाने हैं, इस तरह के लोग भी इस सोशल मीडिया में बहुत सारे हावी हैं। तो ऐसे में बहुत सारे की वाहियात सूचनाएं भी चली जाती हैं, असत्य सूचनाएं भी चली जाती हैं, अपुष्ट सूचनाएं भी चली जाती हैं। वो पेज जो चलाते हैं, वो जो लोग चलाते हैं, उनके प्रशासन तक या प्रशासन के सही लोगों तक पकड़ भी नहीं होती, तो वो सूचनाएं पुष्ट भी नहीं करते और कर भी नहीं पाते। उनका एक ही रहता है कि खट से कोई चीज दिमाग में आई, वो उसको चला देते हैं। उसको चलाने से उनको लगता है कि लोग इसकी तरफ, उनकी रीच आएगी, लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे पढ़ेंगे और उनको जो है उसकी रेवेन्यू आएगी, तो वो इस दिशा में काम करते हैं। तो ऐसे में सूचना के साधन तो बहुत है, मोबाइल भी आज के जमाने में हर घर घर में पहुंच ही गया है, तो सूचना के साधन है, लेकिन उन सूचनाओं पे भरोसा नहीं किया जा सकता है और एक हद तक भरोसा नहीं भी किया जाता। तो ऐसे में लोगों की मनसा रहती है कि उनको किसी ऑथेंटिक साधन से जो सूचना मिले, तो ऑथेंटिक साधन के रूप में या तो फिर हमारे पास अखबार होते हैं या फिर एक रेडियो होता है। तो अखबार को पहुंचने में बहुत देर भी हो जाती है और अखबार सब तक पहुंचता भी नहीं है, लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज है जो गांव गांव ढाणी ढाणी जो है लोग उसको सुनते हैं और लोग उसका इंतजार करते हैं। किसी प्रकार की सूचना कोई उनको मिलती भी है तो उसकी प्रामाणिकता के लिए वो रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो जो है, रेडियो की तुलना ही मतलब एक तरीके से उनसे नहीं की जा सकती। उन पे सोशल मीडिया पे आज जो चल रहा है उसमें 90% सूचनाएं गलत और अपुष्ट चल रही हैं, 90% पोस्ट जो चल रही हैं वो उनका कोई जो है सिरा नहीं है। आप उसमें तो किसी भी तरह की पोस्ट ले लीजिए, आप कुछ आप चाहते हैं कि उसमें चाय के फायदे गिनाने वाली पोस्ट आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी, चाहे कि नुकसान गिनाने वाली चाहिए तो वो मिल जाएगी, आपको किसी भी तरह के व्यायाम के फायदे गिनाने वाली चीज चाहिए तो वो मिल जाएगी, उसके नुकसान वाली चीज चाहिए तो आपको, मैं कहता हूँ कि शराब के भी फायदे गिनाने वाली चीज चाहिए तो आपको गिना देगा वो कहीं ना कहीं से। तो सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता और रेडियो जो है इस मामले में अधिक प्रमाणिक है और इस प्रमाणिकता को लोग बहुत अच्छे से महसूस भी करते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं।
1: जी, किस प्रकार से सोशल मीडिया के इस दौर में भी रेडियो ने अपनी प्रासंगिकता बना रखी है और कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। आप जो कार्यक्रम के दौरान अपने जो पसंद का दूसरा गीत है वो आप हमारे श्रोता साथियों तक पहुंचाइए।
0: मैं श्रोता साथियों को मैं सुनाना चाहूंगा, अभी शराब की बात चली तो शराबी फिल्म का गाना है, मंजिलें अपनी जगह और रास्ते अपनी जगह।
1: जी, मंजिल है अपनी जगह, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गीत के बाद फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हमने बात की थी किस प्रकार से रेडियो ने अपनी भूमिका निभाई है। एक वो अहम क्षेत्र होता है चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र लाइफ टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब 90 मुझे याद आया, थोड़ा बहुत हम तो उस थोड़ा सा दूरदर्शन और रेडियो से जुड़े थे। एक विज्ञापन चला था दो बूंद जिंदगी की, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते थे, वो पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी में, तो उसने गांव-गांव में जो जो अलग जगाई थी, और इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज भारत वो पोलियो मुक्त माना जाता है। तो किस प्रकार से आकाशवाणी ने न सिर्फ पोलियो, इस पोलियो की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र में काम किया है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। हमने एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति से उभरे हैं अभी पिछले सालों में। कोरोना हमने देखा, कोरोना के दौरान जो है रेडियो की जो भूमिका रही, जिस तरीके से जागरूकता, क्योंकि कोरोना में तो बहुत ज़्यादा इस तरह की अफवाहें फैलती थी बहुत सारी, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी की जरूरत होती थी, ऑथेंटिक सूचनाओं की जरूरत होती थी। तो उस समय ने हमने देखा, और आकाशवाणी के साथ मिलकर प्रशासन ने भी जिस तरीके से काम किया और सही सूचनाएँ लोगों तक पहुँचाई, सही चीज़ें पहुँचाई, हमने जो है किस तरीके से मतलब जो दो गज दूरी से लेके वैक्सीनेशन तक जो है पूरा काम किया, और इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से हमारा देश, हमारी दुनिया उभरी। तो उसमें जो काम किया, उससे पहले जब हम कहते हैं कि जितने भी स्वास्थ्य के जो मुख्य मुख्य पायदान है, पोलियो आपने बताया है, जनसंख्या नियंत्रण जो है उस पर काम होता है, परिवार नियोजन, और जो है दूसरे जो जिस तरह के मतलब समय समय पर जो इनके जो है खसरा रुबेला हो या और कोई चीज़ हो, उस तरह की जो भी है, उसके अलावा जो स्वास्थ्य की जागरूकता से रिलेटेड जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं रेडियो में, वो भी बहुत अच्छा जो है मतलब संदेश उनमें रहता है, जो आप समय समय पर बुलाते हैं बड़े बड़े चिकित्सकों को, बड़े बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञों को, और उनसे जो आपकी बातचीत रहती है महत्वपूर्ण विषयों में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में अगर आदमी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती है, हालांकि हमेशा से कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आदमी के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, और उससे भी बड़ी चुनौती है आदमी के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो उन दोनों क्षेत्रों में एक तो आप जो है अपने विशेषज्ञों की सेवाओं से, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं कहता हूँ कि भी आपने जो आप मनोरंजन का जिस तरीके से रेडियो जो साधन है, तो वो भी कहीं ना कहीं संगीत से बड़ा कोई मतलब कोई थेरेपी नहीं हो सकती। तो संगीत अपने आप में एक थेरेपी है। तो संगीत जो है, मैं तो सोने के भी काम लेता रहा। मैं मतलब मुझे जब आदत पड़ गई थी एक बार, तो विद्यार्थी जीवन में, कि मैं रेडियो चला के ही, और रात को आप जो गाने सुनाते थे अच्छे, तो वो गाने सुनते हुए ही मुझे नींद आ जाती थी, कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता। तो

0: बात स्वास्थ्य की चल रही थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी सरकार के कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उनमें अवेयरनेस के लिए, चूंकि रेडियो की अप्रोच जो है गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक है, इसलिए इसकी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से हम रेखांकित कर सकते हैं।
1: जी, किस प्रकार से आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों तक जो देश के जो भी सरकारें बनी हैं उनकी फ्लैगशिप योजनाओं को गांव-गांव डांडी-डांडी तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने में कहीं न कहीं है वो एक योगदान आकाशवाणी का रहा है। और इस सीरीज को हम इस प्रकार से आगे भी जारी रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता साथी है वो आकाशवाणी 890 से जुड़ेंगे। और कुमार अजय जी, आप स्टूडियो में आए और आपने अमूल्य समय आकाशवाणी परिवार को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने मुझे बुलाया, याद किया और श्रोताओं से बातचीत करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत आभार और इस खूबसूरत अवसर पर पूरे आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी एट द रेट 90 साल, आकाशवाणी के 90 साल, कुमार अजय से अमित कुमार की भेंटवार्ता, FM 102.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए

इसी गीत को सुनना चाहा है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से लिखते हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है ये गीत।

सवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिलसिला से चूरू से सुनना चाहा है ये गाना फिल्म धड़कन से। सुनने वाले हैं संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और समस्त

इसी गीत की फरमाइश की अगली कड़ी में हमें अगला संदेश मिला है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बतिया से लिखते ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार, हैप्पी रॉय। दुबिया नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। वंडिंग खेड़ा पंजाब से लिखते हैं, साथ हैं इनके मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

मन भवन कार्यक्रम होता है आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम। जी हाँ, इसमें हम सुनाते हैं गाने आपकी फरमाइशों के आधार पर। हमेरी कला झुंझुनू से लिखते हैं भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा। मैं जानू भादुरवा झुंझुनू से। सुखजिंद्र बुगालिया लिखते हैं चिड़ावा झुंझुनू से। बलजीत कांटीवाल बीदासर झुंझुनू से लिखते हैं। चूरू नई सड़क से लिखते हैं राजा नंदवाणी, रजत, रोहित, केशव, मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी। जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल गुदड़ी बाजार चूरू से। राकेश कुमार दुर्गा मीठा चूरू से। अरविंद खारड़िया जी लिखते हैं लादड़िया चूरू से। निशांत फुंडे, ओम प्रकाश फुंडे, मानसी चेतर गोंदिया महाराष्ट्र से। इन्होंने सुनना चाहा फिल्म क्या कहना का ये गाना।

इसी गीत को सुनना चाहा है गोविंदपुरा सीकर से, लिखते हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। शीतला गेट बीकानेर से इसी गीत की फरमाइश भेजी है मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शुजान खींची, आजम खींची, अमजद और अकमल हुसैन। ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म क्या कहना का ये नगमा।

दिल फिल्म से इस नगमे को सुनना चाहा है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से इसी गीत को सुनना चाहा तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन। चंडीगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहे राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना ने।

0: मुस्तफा फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश ने। ये लिखते हैं ग्राम पीपरलोड सारगांव छत्तीसगढ़ से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से लिखते हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और मंडी शर्मा।
1: प्यार का तोहफा तेरा।
0: इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ओम रेडियो श्रोता संघ नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश गायकवाड़ और

सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन मंगला, इन्होंने भी सुनना चाहा इस गीत को। और पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोड़िया, गीता रानी जाजोड़िया, गगनदीप जाजोड़िया। साथियों, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फरमाइशों को शामिल कर सकें, लेकिन जब फरमाइशें बहुत ज़्यादा हों तो हम कई बार आपके नाम, आपके प्रेम को देखते हुए गीतों के साथ शामिल करते हैं। और उसके पीछे हमारा यही भाव होता है कि जितने प्यार से आप हमें संदेश भेजते हैं, उतने ही प्यार से हम आपको, आपके लिए कुछ सुना सकें। प्रोग्राम बनाने की ये कोशिश है, आप तक मनोरंजन पहुंचाने की कोशिश है। इसी तरह से जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम में। फिलहाल अपने साथी कनिष्क को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन FM 102.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत में कुछ गैर फिल्मी गजलें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

आकाशवाणी केंद्र चूरू से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में गैर फिल्मी गजलें, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

चित्रा सिंह को अभी आपने सुना इस गजल में। गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का प्रोग्राम आकाशवाणी केंद्र चूरू से।

जगजीत सिंह और चेतन सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी है गजल। इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

0: सीमा मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही आज का राजस्थानी लोक संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। अब आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित TVK सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TVK सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान TVK सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर

0: तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as part of preparations for the Global Innovation Event scheduled to be held in Nice, France from 14th to 16th of June next year under the India-France Year of Innovation. The interaction brought together ambassadors, high commissioners, diplomats and government officials to discuss opportunities for global collaboration through India's growing innovation ecosystem. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 others injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district this afternoon. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. The injured have been admitted to hospitals in Jat and Sangli Civil Hospital for treatment. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for practical implementation of Prime Minister Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchase of gold. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight, chasing a target of 169 runs. Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की यह सायंकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।